तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक एलपीजी का सातवां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में सात अजूबे हैं, धरती पर सात समंदर हैं। शादी के समय सात फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को सात वचन देते हैं, सरगम के सुर भी साथ होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी साथ हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी सात पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं? हाँ? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माई फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांधकर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन न जाओ ना तो लकड़ी भी न मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे
3: हैं। अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
5: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब, नाश्ता तो कर लूंगी पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना आता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या करूँ, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ, करती।

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें। सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है, हमारी मेहनत साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अब पका ही भर दो तुम टिफिन में यार, है? पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
0: सच लाओ,
2: जल्दी जाओ। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुनो सुनो जी, हाँ? एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृहस्वामिनियां ही समझ सकती हैं।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये, देखो अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाओ, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
2: जान ही दे देते हैं ना हम अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पति देव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में, अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस प्लेट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुडबाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा,
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे?

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश?
0: हाँ?
1: सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ।
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ।
1: अरे भैया, जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और कर्म का तैसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी, जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ, और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ। और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भवा। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जाने दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहां से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह।
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांस हुए।
1: हाँ।
0: चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले ही लिखवा लो।
1: देखो भैये दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुन लो, सुन, लुढ़का कर देखते हैं, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: अब जलाओ।
3: जल गया, जल जल जल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हो यो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना।

0: सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा। अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
1: ये क्या कर रही हो रचना? आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
2: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
1: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
2: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
1: तो
2: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
1: एक क्विंटल रद्दी कागज?
2: हाँ,
1: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
2: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
1: क्या?
2: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
1: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
2: चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
1: कैसे बैलेंस करना है?
2: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
1: जी।
2: साल भर
1: है?
2: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
1: पर काम कैसे चलेगा? 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
2: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
1: जी।
2: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
1: वाह वाह,
2: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
1: बहुत खूब,
2: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
1: क्या बात है।
0: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए, पर रसोई तो गर्म हो गई। कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
2: ये क्या है जी आपके हाथ में?
1: बूझो तो जानू।
2: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
1: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी, अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
2: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
1: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
2: क्या
1: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
2: और इस नए चूल्हे में
1: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
2: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
1: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
2: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
1: नहीं आ रहा ना?
2: नहीं
1: आएगा भी नहीं।
2: क्यों?
1: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
2: अरे
1: मुझे भी नहीं मालूम था, वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है, चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
2: यही है ना बुकलेट?
1: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
2: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
1: हाँ, अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
2: हाँ, पढ़ो। देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
1: जी।
2: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
1: जी।
2: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
1: जी।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
1: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
2: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
1: जी जी,
2: सिंपल। ओके, एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
1: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
2: अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
1: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
2: अच्छा,
1: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली, नारंगी व एक जैसी ना हो।
2: अच्छा,
1: समझी?
2: हाँ,
1: है? अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली, चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
2: अच्छा,
1: एक
2: अच्छा,
1: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
2: हाँ,
1: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
2: नहीं, मजाक नहीं। अरे, इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
1: हाँ,
2: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
1: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
2: हाँ, जरूर, जरूर।
1: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
2: हाँ,
1: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
2: नहीं नहीं।
1: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
2: नहीं नहीं।
1: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे। पहले वीजा लें, फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
2: इजाजत नहीं मिलेगी।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना। आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया ना जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। संध्या के 5 बजे हैं। अब से आप हमारी सांध्यकालीन सभा में आगे के कार्यक्रम सुनेंगे। इस सभा में आज मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो इसके पहले आइए हम आपको बताए देते हैं कि आज शाम की सभा में आप रेडियो आजाद हिंद से कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा 5:10 से मेरे साथ यानी आपकी अपनी पूर्वा के साथ। शाम 6 बजे का वक्त होगा वतन का राग का। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम समर्पित है नारायण मल्हार जोशी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। शाम 6:30 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा। डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा ने इसमें चर्चा की है। 7 बजे का वक्त होगा योग संवाद का। आज इस कार्यक्रम में शीर्षक रहेगा योग वशिष्ठ, अहंकार और चित्कार दोष। श्रोताओ, शाम 7:30 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम भारत विभूति। आज इस कार्यक्रम में हमारी भारत विभूति हैं सुंदरलाल बहुगुणा। रात 8:30 आप सुनेंगे आजाद हिंद कार्यक्रम। आज ये कार्यक्रम आधारित होगा सरजू प्रसाद सिंह पर। और रात्रि 9:00 सुनिएगा बुंदेली गायन आकांक्षा मिश्रा से हमारे कार्यक्रम स्वर सागर में। रात 9:30 का वक्त होगा हमारे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद का। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी आज शाम की सभा में हमारे कार्यक्रमों की। ₹90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। श्रोताओ, इंसानियत के पैरोकार और इस देश के अजीम शायर बशीर बद्र अब इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए हैं। रेडियो आजाद हिंद की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

हमारे भोपाल की पहचान शायर बशीर बद्र। उन्हें सादर श्रद्धांजलि। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 128वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं अग्नि और छंद है अत्यष्टि।
1: अयम जायत मनुषो धरी मणि, होता यजिष्ठ उषिजा मनु व्रतमग्नि स्वमनु व्रतम विश्व सृष्टि सखीयते रैरिव श्रवस्यते अदब्धो होता निषद दिस्पदे परिवीत इडस्पदे। देवताओं का आवाहन करने वाले, यज्ञादि कर्मों का संपादन करने वाले ये अग्निदेव यज्ञादि कर्म व्रत नियमों के निर्वाह को दृष्टि में रखकर मनुष्यों द्वारा अरणि मंथन से प्रकट होते हैं। मित्रता की भावना करने वालों को सर्वस्व तथा धनाकांक्षी के लिए धन का अगाध भंडार प्रदान करते हैं। पीड़ा मुक्त होता रूप में ऋत्विजों से घिरे हुए अग्निदेव यज्ञ वेदी में स्थापित किए जाते हैं। वे निश्चित ही यज्ञ स्थल में प्रतिष्ठित होते हैं। तम यज्ञ साधमपि वातयाम स्यरीर्तस्य पथा नमसा हविष्मता देवताता हविष्मता स न ऊर्जा मुपाभृत्यया कृपा न जूर्यति यम मातरिष्वा मनवे परावतो देवं भाह परावतः। हम सत्य मार्ग से अति विनम्रता पूर्वक यज्ञीय कर्म में घृतादि से युक्त आहुतियां देते हुए अग्निदेव की अर्चना करते हैं। जिन अग्निदेव को मनु के निमित्त मातरिष्वा वायु ने सुदूर स्थान से लाकर प्रदीप्त किया, ऐसे अग्निदेव हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न को ग्रहण करके भी अपनी ताप क्षमता में कमी न आने दें। एवेन सद्यः पर्येति पार्थिवम् मुहुर्गीरेतो वृषभः कनिक्रद द्यद्ध द्रेतः कनिक्रदत् शतम् चक्षाणो अक्षभिर्देवो वनेषु तुर्वणिः सद्दो दधान उपरेषु सानुष्वग्निः परेषु सानुषु। सदा प्रशंसनीय सैकड़ों आँखों से वनों को प्रकाशमान करते हुए समीपस्थ और दूरस्थ पर्वत शिखरों पर अपना स्थान निर्धारित करते हुए शक्तिशाली शक्ति के धारण करता तथा गर्जनशील शत्रु विनाशक ये अग्निदेव सुगम मार्ग द्वारा शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। स सुक्रतुः पुरोहितो दमे दमेग्निर् यज्ञस्याध्वरस्य चेतति कृत्वा यज्ञस्य चेतति कृत्वा वेधा इशूयते विश्वा जातानि पस्पशे यतो घृतश्री रति थिर जायत वहनिर्वेधा अजायत। सत्कर्मशील अग्रगामी अग्निदेव प्रत्येक घर में हिंसा रहित यज्ञाग्नि के रूप में प्रज्वलित होते हैं, श्रेष्ठ कर्म द्वारा प्रदीप्त होते हैं तथा प्रखर कर्मों द्वारा अन्नादि के इच्छुकों को ज्ञानी अग्निदेव संपूर्ण उपभोग्य पदार्थ प्रदान करते हैं, क्योंकि ये घृताहुति को ग्रहण करने के लिए पूजनीय अतिथि रूप में प्रकट हुए हैं। ये अग्निदेव हविवाहक तथा ज्ञान संपन्न हैं। कृत्वा यदस्य तविशीषु प्रिंचतेग्ने रवेण मरुताम न भोज्येशिराय न भोज्या सहिष्मा दान मिन्वति वसूनाम च मज्मना स नस्त्रासते दुरिता दभिहृतः शंसा दघा दभिहृतः। जिस प्रकार मरुदगण अग्नि को भोजन कराते हैं और जिस प्रकार सत्पुरुष भिक्षुकों को भोजन देते हैं, उसी प्रकार याजक गण विचार पूर्वक आदर सहित इन अग्नि ज्वालाओं के लिए आहुतियां प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ये अग्निदेव अपनी सामर्थ्य से धनों को हविदाता की ओर प्रेरित करते हुए उसको पाप कर्मों और पराजय से सुरक्षित करते हैं। वे अग्निदेव दैवी अभिशापों तथा जीवन संघर्षों में पराभव से बचाते हैं। विश्वो विहाया अरतिर्वसुर दधे हस्ते दक्षिणे तरणिर्न शिश्रथच्छ वस्यया न शिश्रथत विश्वस्मा इदि शुद्ध्यते देवत्रा हव्य मोहिषे विश्वस्मा इत सुकृते वार वृण्वत्यग्निर्द्वारा व्यवृण्वति। विश्वव्यापक महान और सामर्थ्यशाली अग्निदेव सूर्य देव के समान ही यजमान को देने के लिए दाहिने हाथ में धन धारण करते हैं। वे मुक्त हस्त से यशोभिलाषी सत्कर्मशीलों को धन देते हैं, दुष्टों और दुराचारियों को नहीं। हे अग्निदेव, दिव्यता युक्त आप हविष्यान्न के अभिलाषी समस्त देवों के लिए हवि का वहन करते हैं तथा श्रेष्ठ कर्म करने वालों के निमित्त धन प्रदान करते हैं। आप उनके लिए धन कोश को पूर्ण रूप से खुला कर देते हैं। स मानुषे व्रजने शंतमो हितोग्निर्यज्ञेषु जेन्यो न विष्पतिः प्रियो यज्ञेषु विष्पतिः। स हव्या मानुषाणामिणा कृतानि पत्यते स नस्त्रासते वरुणस्य धूर्तेर्महो देवस्य धूर्तेः। वे अग्निदेव मनुष्यों के पाप निवारण के निमित्त यज्ञीय कर्मों में अति सुखप्रद और कल्याणकारी हैं। विजेता नरेश के समान ही प्रजाजनों के पालक और स्नेह पात्र हैं। यजमानों द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न को अग्निदेव ग्रहण करते हैं। ऐसे अग्निदेव यज्ञ कर्म के विरोधियों और धूर्त जनों से हमें सुरक्षित करें तथा महिमा युक्त देवताओं के कोप भाजन होने से हमें बचाएं। अग्निम होतारमीडते वसुधितिम प्रियम चेतिष्ठमरतिम नियरिरे हव्यवाहम नियरिरे विश्वायुम विश्ववेदसम होतारम यजतम कविम देवासो रणवमवसे वसुयवो गीर्भी रणवम वसुयवः। धन धारण करता अति चैतन्य प्रेरणा युक्त सर्वप्रिय होता रूप अग्निदेव की सभी मनुष्य प्रार्थना करते हुए उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। उनके प्रयास से हविवाहक सबके प्राण स्वरूप सर्वज्ञाता देवावाहक पूजनीय और क्रांतदर्शी अग्निदेव भली प्रकार प्रज्वलित किए जाते हैं। ऋत्विकगण धन की कामना से प्रेरित होकर अपने संरक्षणार्थ उन मनोहारी अग्निदेव की स्तोत्र गान करते हुए अर्चना करते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 128वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदं माधवं। हे प्रभु, जिस पर भी आपकी कृपा हो जाए वो परमानंद से भर जाता है। ना बोलने वाला यानी कि मूक वो भी बोलने लगता है, और जो अपंग है उसमें इतनी क्षमताएं आ जाती है कि वो पर्वतों को लांघ सकता है। बस प्रभु आपकी दया हम पर बनी रहे, आप बड़े ही दयालु हैं।

बुद्धि इंसान का एक ऐसा गुण जिसके लिए विद्या का अर्जन करना आवश्यक नहीं है। बुद्धि तो उस अग्नि के समान होती है जो अकेले ही पूरी ही दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम कर सकती है। तो जब भी प्रार्थना करें ईश्वर से सद्बुद्धि

इस कलयुग में प्रभु का नाम ही हमें तार सकता है, ये कई ज्ञानियों ने बताया है। तो क्यों ना आनंद

मेहनत करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है, धर्म पर चलने से पाप समाप्त हो जाते हैं, और यदि हम मौन रहते हैं तो सदा ही कलह को समाप्त कर देते हैं, और यदि हम में आत्मविश्वास रहता है तो भय अपने आप ही

आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहें, बल्कि सत्कर्म करना ही

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं। और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान आवश्यक है।

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर सन 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़ते।

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से की 10वीं कड़ी लेकर हाजिर हैं।

0: हमने अपनी पिछली कड़ी में सुना था, यानी 9वीं कड़ी में सुना था कि गढ़ा राज्य और दिल्ली की मुगल सेना के बीच अब से 459 वर्ष पहले सन 1564 ईस्वी में नरई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पहले दिन गढ़ा के राजा वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और 3 बार मुगल सेना को नरई घाटी से पीछे धकेल दिया। इस प्रकार पहले दिन गढ़ा राज्य की विजय हुई, किंतु युद्ध में वीर नारायण के घायल हो जाने पर उन्हें सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लिया गया और युद्ध की कमान रानी दुर्गावती ने अपने हाथों में ले ली। वो अत्यंत पराक्रम से लड़ रही थी। उस दिन दोपहर के बाद आसफ खां की सेना के तोपखाने ने भी आग उगलनी शुरू कर दी। दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध चल रहा था। दोनों ओर के सैनिक हताहत हो रहे थे। शाम होने को थी। इसी बीच रानी दुर्गावती की दाई कनपटी पर एक तीर आकर लगा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से निकाल दिया। लेकिन अगले ही क्षण एक तीर और उनकी गर्दन में जा लगा और दूसरा तीर उनके सीने पर। रानी दुर्गावती अच्छी तरह जानती थी कि शत्रु मुगल सेना के हाथों जीवित लगना कितना अपमानजनक होगा। उन्होंने स्थिति को भांपते हुए अपने महावत आधार सिंह बखीला को कहा कि वो अपनी कटार से रानी की जीवन लीला समाप्त कर दे, जिससे वो शत्रुओं के हाथ ना लगे। लेकिन महावत आधार सिंह बखीला तो उन्हें अपनी मां मानते थे, वो ऐसा कैसे कर सकते थे। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ दिए और उनसे निवेदन किया कि वो किसी भी प्रकार से युद्ध क्षेत्र से उन्हें बाहर ले जाएंगे, वो केवल उन्हें आज्ञा प्रदान करें। लेकिन रानी दुर्गावती युद्ध क्षेत्र से कैसे पलायन कर सकती थी, इसलिए वो इसके लिए राजी नहीं हुई। अगले ही पल उन्होंने स्वयं ही अपने आप को कटार मार ली और गढ़ा की अस्मिता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। रानी दुर्गावती वीरांगना हुई। एक बार फिर इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पूजा जी, आगे जानना चाहेंगे आपसे कि रानी के प्राणोत्सर्ग के उपरांत क्या हुआ।
1: रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य की अस्मिता के लिए वीरांगना हुई थी। वह प्राणोत्सर्ग करने के बाद भी विजयी हुई। उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम, जिजीविषा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गई। जैसा कि आख्यान में भी कहा गया है कि ताक निशाना महारानी के हो नहीं कोई उपचार, जख्मी चोट लगिन सतन मां बहे रक्तन की धार। माता का रक्त जो है वो बह रहा है, उनके सीने पर वाण लगा है, चोट लगी है। जोर फिरंगी माथा मां मोहे नहीं जावे आँच, नारी के तन आए बचा हूं यही है हवे मोला सांच। नारी का तन अब बचाना होगा, उसके अपमान से बचाना होगा। कहत कहत माता गिरिए पावे गति निर्वाण, अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार। फिर आगे कहते हैं कि माता अब गिर रही हैं और निर्वाण को प्राप्त कर रही हैं। सोचिए, एक वीरांगना है, वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अब निर्वाण को प्राप्त हो रही है। ऐसे भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अमृत चोला ला करके हो परलोके सिधार, और उन्होंने तो अब अमृत का चोला पहन लिया है
0: जी।
1: और वो अब परलोक को सिधार रही है। चलो चढ़ी गढ़ा माँ मितवा करवो तन निसार, हाथ जोर विनती करे हो जय जय होए तुम्हार। तो माँ की जय है जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस युद्ध क्षेत्र में।
0: रानी महारानी जो आए, माता दुर्गा जो आए, रणमा जूझे तलवार माता दुर्गा कहाए, जय जय होवे तुम्हार, जय जय होवे तुम्हार। वाह पूजा जी, रानी के प्राणोत्सर्ग करने पर जिस प्रकार हमें आख्यान में ये वर्णन मिलता है, उसी तरह क्या अन्य ग्रंथों में भी कुछ उल्लेख है?
1: जी हाँ, गणा राज्य के ख्याति लब्ध कवि थे कवि केशव दीक्षित और नरहरि महापात्र, जिनकी चर्चा हमने पहले भी की थी। इनके द्वारा गणेश नृप वर्णन संग्रह श्लोका नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें इन्होंने लिखा कि रानी दुर्गावती वीर शिरोमणि राजा दलपति शाह की लक्ष्मी के समान है, जिसकी स्तुति चारों दिशाओं में श्रेष्ठ राजाओं और उत्तम ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। सत्य के प्रति आसक्त मन वाली, चंद्रमा की तरह पवित्र कीर्ति युक्त, कर्ण के समान दानी, दुर्गा के अवतार वाली यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण कर लेती है।
0: जी।
1: इतना सुंदर वर्णन इन्होंने कहा है और आगे लिखते हैं कि जिसके नाम की कीर्ति रूपी लता स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में अबाध गति से गंगा की तरह बढ़ने लगी। दुर्गा की अवतार यह रानी दुर्गावती अपने असंख्य प्रबल शत्रुओं का मान हरण करने वाली थी।
0: वाह क्या बात है। पूजा जी जैसे आपने बताया था कि मुगल सेना की तरफ से भी कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिसमें रानी के बारे में उल्लेख था, क्या प्राणोत्सर्ग के बाद का भी कुछ उल्लेख है उनमें?
1: बिल्कुल, मुगल साहित्य में भी रानी दुर्गावती के पराक्रम की चर्चा होती रही, इसलिए अकबरनामा में उस पल को चित्रित किया गया जब रानी को अनेक तीर लग चुके थे।
0: अच्छा।
1: वह प्राणोत्सर्ग करने ही वाली थी। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि उनके हाथी सरमन को भी अनेक तीर लगे हुए हैं, फिर भी वह रण में चिंघाड़ रहा है। महावत आधार सिंह बखीला ने भी रानी को बचाने के लिए तलवार उठा रखी है और वह भी वीरता पूर्वक लड़ रहा है। उनके सेनानायक उन्हें चारों ओर से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मुगल सेना का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अनेक सैनिक नदी के किनारे लहूलुहान पड़े हैं। अबुल फजल ने इस भीषण युद्ध का शब्दों में भी जिक्र किया जिसमें अनेक सैनिकों के हताहत होने और गढ़ा राज्य के प्रमुख सेनापतियों जैसे कनूर कल्याण बखीला चकरमान खरचली खान जहान डकीत और महारक ब्राह्मण के नाम भी उल्लेखनीय हैं जिन्होंने इस युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी।
0: अच्छा।
1: मुगल इतिहासकार बदायूं ने भी रानी के प्राणोत्सर्ग पर लिखा है लेकिन जिस तरीके से लिखा है वो बहुत बुरा है। बदायूं ने लिखता है कि प्रत्येक घृणित पशु अपना घृणित भोजन प्राप्त कर ही लेता है, यानी उसका कहने का अर्थ है कि दुर्गावती को जैसी मौत मिलनी चाहिए थी वैसी ही मिली, जो उसकी नियति होनी चाहिए थी वैसी ही हुई
0: जी।
1: और यहाँ तक ही वो रुकता नहीं है और आगे लिखता है कि यह सच है कि किसी ईसाई का कुआं शुद्ध नहीं होता, किंतु वह कम से कम एक यहूदी की लाश धोने के काम तो आ ही जाता है। युद्ध में शत्रुओं के लिए इस तरीके से टीका टिप्पणी करने की परंपरा भारत में कभी नहीं रही थी।
0: बिल्कुल।
1: किंतु बदायूं ने अपनी सीमाएं भूल जाता है और एक रानी जो पराक्रम के साथ पराकाष्ठा तक लड़ी उसके प्रति इस प्रकार से लिखना उसकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है।
0: निश्चित रूप से पूजा जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई। आपने जब बात की अकबरनामा की उसमें कितनी ही बार ये जिक्र आया कि वो कितनी बड़ी योद्धा थी, उनके रूप सौंदर्य के साथ उनके गुणों की भी चर्चा की गई और फिर मृत्यु के पश्चात तो हमारे यहाँ दुश्मन की भी कोई बुराई नहीं की जाती रही है। लेकिन मुगल सेना के साहित्य में यदि इस तरह का कुछ मिला है तो निश्चित रूप से इस तरह की लिखावट ही हम कह सकते हैं कि वो घृणित है। पूजा जी, रानी तो यहाँ वीरांगना हो गई, ये जिक्र आ गया, कहानी हमारी यहाँ तक हो गई, लेकिन जब रानी वीरांगना हुई उसकी एक दिन पहले उनके पुत्र जो कि राजा वीर नारायण थे वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें सेना किसी तरह बचा करके ले गई थी, तो उस सेना की टुकड़ी का क्या हुआ, राजा वीर नारायण का क्या हुआ और क्या मुगल सेना ने उन पर हमला नहीं किया?
1: जैसा कि हम जानते हैं कि नरई के युद्ध में घायल राजा वीर नारायण को गढ़ा की सेना की एक टुकड़ी बचाकर चौरागढ़ के किले में ले गई थी
0: जी।
1: और यहाँ बुरी तरह से घायल वीर नारायण का उपचार होने लगा लेकिन आसफ खां को ये खबर लग चुकी थी कि वीर नारायण चौरागढ़ के किले में है। उसने चौरागढ़ की ओर अपनी सेना सहित कूच कर दिया।
0: अच्छा।
1: आसफ खां की सेना का सामना गढ़ा राज्य के मंत्री आधार सिंह कायस्थ ने किया किंतु आसफ खां की सेना के सामने निश्चित ही था कि चौरागढ़ का बचना मुश्किल था
0: जी।
1: इसलिए जब सेना चौरागढ़ के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई तो घायल वीर नारायण भी पूरी वीरता से उनका सामना करते हुए लड़े किंतु इस युद्ध में वीर नारायण युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
0: निश्चित रूप से गढ़ा की सेना यहाँ पर बहुत वीरता से लड़ी लेकिन बहुत दुखद के माँ और बेटे दोनों की मृत्यु एक दो दिन के अंदर अंदर वहां पर हो गई। तो क्या फिर मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया?
1: अब यह निश्चित था कि मुगल सेना किले में प्रवेश करेगी ही
0: जी जी।
1: वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हो ही चुके थे
0: जी।
1: आधार कायस्थ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे तो मुगल सेना ने किले में प्रवेश किया। लूटपाट आगजनी फसलों को नुकसान पहुंचाना पशुओं को खदेड़ना ये सब तो होना ही था और हुआ भी लेकिन इसके अलावा स्त्रियों के साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार होगा जैसा कि उस समय होता भी था तो उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए युद्ध के परिणाम के अनुमान के अनुसार किले में जौहर की तैयारियां की जा चुकी थी। जैसे ही मुगल सेनापति आसफ खां की सेना चौरागढ़ के किले के अंदर घुसी, दूसरी ओर किले की स्त्रियों ने भीषण अग्नि में प्रवेश कर जौहर कर लिया। यह कितना भयावह दृश्य रहा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अबुल फजल ने इस जौहर का उल्लेख इस प्रकार किया है कि वृत्ताकार यानी कि एक गोलाकार कुंड में भीषण आग लगी थी, सभी स्त्रियां एक एक करके उसमें प्रवेश कर गईं। वह कहता है जैसे गुलाब की फसल आग लग जाने पर राख में तब्दील हो जाती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी अग्नि कुंड में प्रवेश करते ही राख में तब्दील हो गईं। सभी स्त्रियां उसमें जलकर राख हो गईं। वह आगे लिखता है कि जब उस जगह का द्वार खोला गया जहां अग्नि कुंड था तो केवल दो ही स्त्रियां जीवित अवस्था में मिली थीं।
0: अच्छा,
1: ये दोनों स्त्रियां इसलिए बच गई थीं क्योंकि लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी कि बीम
0: जी
1: उनके पास आकर इस प्रकार गिरा कि वह आग में झुलस नहीं पाई और बेहोश हो गई।
0: वाकई श्रोताओं, कितना विभत्स, कितना ये कठिन दृश्य रहा होगा जिस किसी ने भी वो देखा होगा, भले ही वो दुश्मन सेना ही क्यों ना हो। और यदि आप उस जौहर की कल्पना भी करें तो रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो गढ़ा की जो महिलाएं थीं वो वाकई में सब की सब अपनी रानी की तरह ही उस जौहर में कूद कर वीरांगना हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हाथों नहीं सौंपने दिया। पूजा जी, ये दो स्त्रियां कौन थी जो उस कुंड में जौहर करने के बाद भी किसी तरह से बच गई थी, और क्या उनके साथ भी बुरा सलूक हुआ?
1: ये दोनों स्त्रियां कौन थीं इसका भी उल्लेख अबुल फजल ने ही किया है। पहली थी वीरांगना रानी दुर्गावती की बहन कमलावती।
0: अच्छा।
1: और दूसरी थी पूरागढ़ के राजा की कन्या यानी पूरागढ़ की राजकुमारी। इनका नाम तो नहीं मिलता है
0: जी,
1: पर उल्लेख है। इस राजकुमारी से ही राजा वीर नारायण का विवाह तय हुआ था और कुछ ही दिनों में इनका विवाह होने भी वाला था, किंतु राजा वीर नारायण के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाने का समाचार सुनते ही पूरागढ़ की राजकुमारी ने सहर्ष जौहर करना स्वीकार किया।
0: जबकि वो विवाहित भी नहीं थी।
1: जी हाँ, तब वह विवाहित भी नहीं थी, 16-17 साल की रही होंगी। वह अन्य स्त्रियों के साथ जौहर के लिए अग्नि कुंड में सहर्ष ही प्रवेश कर गई थी, संभवतः रानी दुर्गावती की बहन कमलावती और इस राजकुमारी ने सर्वप्रथम अग्नि कुंड में प्रवेश किया होगा, क्योंकि शायद आग पूरी तरह फैल नहीं पाई होगी और आग लगते ही ऊपर की ओर लगा लकड़ी का एक विशाल शहतीर यानी बीम का कोना जल गया होगा और वो नीचे गिरा। उसके गिरते ही ये दोनों उसके पीछे दब कर बेहोश हो गईं और बच गईं। लेकिन इनका बचना शायद जौहर से भी ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। इनकी जो परिणति हुई उसका भी उल्लेख मिलता है। रानी दुर्गावती की बहन कमलावती के साथ ही राजकुमारी को भी अकबर के मुगल हरम की घृणित यातनाओं को झेलना पड़ा।
0: हो, ये कितना दुखद है श्रोताओं। देखिए कि एक 16-17 साल की जो बालिका जिसका विवाह राजा से तय हुआ है, और जब उस बच्ची ने, उस बालिका ने, उस तरुणी ने जब ये सुना कि उसके होने वाले पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो वो सहर्ष जौहर के लिए तैयार हो गई और उस किले में आ गई जहां पे जौहर होना तय हुआ था। मनचाही मौत तो उसे नसीब नहीं हुई, वो किसी तरह बच गई, लेकिन फिर भी उसके शौर्य की गाथा सुनकर हम आज उसे वीरांगना निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन यहां आप अकबर का चरित्र देखिए कि अकबर का जो हरम था जहां इन बची हुई दो मासूमों को वहां पर ले जाया गया, जो किसी तरह मौत के मुंह से बच गई थी, फिर भी अकबर के हरम में उन्हें शामिल किया गया। ये कितना घृणित था, और इससे समझ में आता है पूरी मुगल सेना का चरित्र किस तरह का था। पूजा जी, जैसा कि महिलाओं ने जिस स्थिति से बचने के लिए जौहर किया था उससे ये तो नहीं बच पाई, लेकिन जिसके लिए हमेशा से अकबर की सेना, मुगल सेना और पहले के भी मुगल बदनाम थे कि जब वो युद्ध क्षेत्र के लिए जाते थे, जब वो कहीं किसी तरह से विजय प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद वो जो जो चीज़ें करते थे वहां पर, क्या यहाँ भी उन्होंने वही किया, लूटपाट मचाई, क्या फसलों को नुकसान पहुंचाया?
1: बिल्कुल। रानी दुर्गावती के प्राणोत्सर्ग के बाद आसफ खां की सेना गढ़ा राज्य में घुस गई
0: जी।
1: और जैसा कि अक्सर मुगल सेना किया करती थी, उन्होंने यहाँ अंधाधुंध पशुओं को खदेड़ा, फसलों को नुकसान पहुंचाया और उससे भी अधिक शहरों में लूटपाट की, गांवों में घुस गए, वहां लूटपाट की। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे मंदिरों को, मठों को क्षतिग्रस्त किया। और लंबे इतिहास में अगर हम देखें तो जो हम एक देख रहे थे कि गढ़ा राज्य में वैष्णव संप्रदाय की एक बहुत बड़ी श्रृंखला चल रही थी, लगातार आचार्य आ रहे थे और वैष्णव धर्म के अनेक मठ मंदिर यहाँ बन रहे थे, उनमें विद्या अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा था, उस सब पर एक लगाम सी लग गई और बहुत लंबे समय तक, हम देखते हैं लगभग 100 वर्षों तक, फिर दोबारा इस तरीके के अध्यापन केंद्र हमको गढ़ा राज्य में न के बराबर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो मंदिरों का निर्माण हो रहा था वो भी रुक गया और बहुत तरीके से क्षति पहुंचाई गई।
0: अच्छा पूजा जी, एक और चीज का वर्णन यहाँ पर सुनने को आता है कि आसफ खां, जिसे कि अकबर ने खुद वहां पर अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, उसने खुद अकबर से ही यहाँ पर गद्दारी की थी, क्या ये बात सही है?
1: बिल्कुल सही है। चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला, कोई सीमा नहीं थी जिसकी। अबुल फजल खुद लिखता है कि उसे वहां सिक्के, ठोस रूप में सोना, नक्काशीदार पात्र, हीरे जवाहर मोती, सोने से बनी पशुओं की अनेक ठोस आकृतियां और अन्य दुर्लभ कीमती वस्तुएं मिली थी। उसे 100 से अधिक बड़े बड़े घड़े मिले थे जो सोने के अशर्फियों से भरे हुए थे। लेकिन वह आगे भी लिखता है कि आसफ खान ने मुगल शासक अकबर के साथ ही धोखाधड़ी की, यह तो उसका पुराना चरित्र ही था
0: जी।
1: और चौरागढ़ के लूट के माल का सही ब्यौरा अकबर को आसफ खान ने दिया ही नहीं, बल्कि जो धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बड़ी संख्या में हाथी और अन्य दुर्लभ वस्तुएं मिली थी उसकी सही जानकारी उसने अकबर को दी ही नहीं
0: जी।
1: उसका 10% भी उसने नहीं बताया, ऐसा अबुल फजल ने लिखा है
0: जी।
1: जिसका खुलासा बाद में हुआ था और पता चला कि 10% ही केवल बताया गया था। अकबरनामा की एक अन्य पेंटिंग है जिसमें आसफ खां को चौरागढ़ की लूट का माल अकबर के सामने पेश करते हुए दिखाया गया है।
0: अच्छा,
1: इसमें सोने की अशर्फियों से भरे हुए कई थाल दिखाए गए हैं और कुछ में तो हीरे जवाहरत भरे हुए हैं
0: जी।
1: कुछ हाथी खड़े हैं और कुछ अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी वो पेश कर रहा है जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी
0: जी।
1: यानी जो पेंटिंग में दर्शाया गया है वह तो चौरागढ़ से प्राप्त संपदा का बहुत ही कम भाग है
0: जी।
1: किंतु मुगल दरबार इतनी संपदा देखकर ही आश्चर्यचकित हो गया था। आसफ खां लूट के माल का कुछ अंश अकबर को देकर और रानी को प्राणोत्सर्ग पर विवश करने जैसे कुकृत्य पर वाहवाही बटोर कर गढ़ा राज्य वापस लौट आया।
0: अच्छा,
1: इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ा राज्य के बीच युद्ध के उपरांत की संधि हुई।
0: अच्छा,
1: गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्र शाह को घोषित किया गया। चंद्र शाह राजा वीर नारायण के चाचा थे
0: जी।
1: यानी कि राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर हुए
0: जी।
1: तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप गढ़ा के विशाल राज्य पर मुगलों का कब्जा हो गया
0: जी।
1: हमने गढ़ा राज्य के प्रतापी राजा संग्राम शाह के विषय में जब चर्चा की थी
0: जी।
1: तो बताया था कि उनके अधिकार में 52 किले थे। इन 52 गढ़ों में से 10 गढ़ गढ़ा राज्य को अकबर को देने पड़े।
0: पूजा जी, जो संधि के मुताबिक गढ़ा राज्य और मुगल शासक के अकबर के बीच जो संधि हुई, तो उसमें जो 10 किले थे, जो 10 गढ़ थे, वो मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य ने दे दिए। तो क्या फिर अकबर ने उन पर शासन किया उसके आगे?
1: जी हाँ, अब ये 10 गढ़ों पर मुगल शासक का अधिकार था
0: जी।
1: और आसफ खां गढ़ा लौट चुका था
0: जी।
1: अब वो यहाँ का सूबेदार बन गया था। उसके पास अकूत संपदा थी जो उसने गढ़ा राज्य से लूटी थी
0: जी।
1: जिसका पता अकबर को भी नहीं था
0: जी।
1: तो अब वो यहाँ आकर अपनी मनमानी करने लगा और जब अकबर को खबर पहुंची तब फिर अकबर ने उसकी खबर ली। अच्छा, ये आगे का इतिहास है।
0: अच्छा,
1: लेकिन जब 10 गढ़ मुगल साम्राज्य के पास आ गए तो अकबर को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि इन गढ़ों पर दिल्ली से शासन करना अत्यधिक कठिन है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों में है, इन पर कब्जा जमाए रखना आसान नहीं था। इसलिए अकबर को यह गढ़ गोंडों को वापस करने पड़े।
0: वाह।
1: किंतु अकबर ने यह गढ़ गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश के उत्तराधिकारी चंद्र शाह को वापस नहीं किए।
0: अच्छा।
1: बल्कि उन गढ़ों में जो स्थानीय किलेदार आदि थे उनको ये गढ़ वापस किए गए, जिससे नए गोंड राजवंशों का उदय हुआ।
0: अच्छा।
1: ये जो 10 गढ़ दिए गए थे ये थे रायसेन, कारूबाग, कुरबाई, भोपाल, भोरासो, गढ़गुन्नौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकड़ाई।
0: अच्छा।
1: ये सभी किले मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल
0: जी।
1: और उसके आसपास स्थित हैं।
0: जी।
1: भोपाल और रायसेन तो आसपास हैं ही, हम जानते हैं मध्य प्रदेश में, और आजकल बड़े शहर भी हैं। गढ़गुन्नौर अब गिन्नौरगढ़ के नाम से जाना जाता है
0: जी।
1: बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ ये भी भोपाल के आसपास के जिलों में स्थित हैं।
0: जी, बिल्कुल।
1: मकड़ाई और कारूबाग यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले और उसके आसपास स्थित हैं। तो गिन्नौरगढ़ से भोपाल के गढ़ा राज्य का उदय हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध रानी कमलापति हुई।
0: जी, बिल्कुल।
1: और मकड़ाई भी गोंड शासित स्वतंत्र राज्य बना, जो सर्वाधिक लंबे समय तक यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक 1947 तक गोंड राजवंश द्वारा शासित रहा।
0: अच्छा।
1: इधर गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में राजा चंद्रशाह के उत्तराधिकारी भी हुए
0: जी।
1: उनके उपरांत मधुकर शाह और प्रेम शाह क्रमशः गढ़ा के राजा बने
0: जी।
1: यहाँ जो उल्लेखनीय राजा रहे वो थे हृदय शाह
0: जी, बिल्कुल,
1: जो 1635 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे
0: जी।
1: जिन्होंने गढ़ा की राजधानी स्थानांतरित करके वर्तमान मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश का
0: जी।
1: वहां पर नर्मदा नदी के किनारे रामनगर के नाम से बसाई।
0: तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां श्रोताओं हमें मिल रही हैं। 10वीं कड़ी आप सुन रहे हैं इतिहास के पन्नों से की, और हमारे साथ बनी हुई है इन तमाम एपिसोड्स में डॉक्टर पूजा सक्सेना, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। पूजा जी, इसके बाद की कहानी क्या, किसका जिक्र होने वाला है, थोड़ा सा एक हिंट दे दीजिए, क्योंकि आज तो समय हो गया है, श्रोताओं की उत्सुकता जरा बरकरार रहनी चाहिए।
1: अब हम आगे जो सुनेंगे वो राजा हृदय शाह की कहानी सुनेंगे, उन्होंने अपनी राजधानी कैसे परिवर्तित की
0: जी।
1: कैसे बसाई, और क्योंकि वो बहुत अधिक संगीत प्रेमी थे।
0: अच्छा।
1: तो संगीत में उनका जो योगदान है वो उल्लेखनीय है, और स्थापत्य कला में भी। तो अगली कड़ी में हम उनके बारे में जानेंगे।
0: चलिए, तो राजा हृदय शाह यानी कि जो कि राजा हृदय शाह के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, खास तौर पर बुंदेलखंड रीजन में, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को। हम आपको बता दें पूजा जी हमारे साथ बनी हुई हैं, डॉक्टर पूजा सक्सेना, अगले एपिसोड में भी पूजा जी हमारे साथ रहेंगी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करेंगी। इस पूरे एपिसोड को रिकॉर्ड किया है और संपादन किया है अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भूमध्य सागरीय मूर, मेडिटेरेनियन मूर्स, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के असली उस्ताद। क्या आप जानते हैं कि जब वास्को डिगामा सन 1498 में कालीकट पहुंचा तो उसका सामना आदिम आदिवासियों से नहीं बल्कि ऐसे व्यापारियों से हुआ जो उनसे कहीं अधिक भाषाएं जानते थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर समझते थे? पुर्तगाली अपने साथ रिकॉनविस्टा की मानसिकता लेकर आए थे, जहां वे पूरी दुनिया को केवल ईसाई और मूर यानी मुसलमानों के द्विआधारी चश्मे से देखते थे। उनकी अज्ञानता का आलम यह था कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को भी चर्च समझ लिया। अमले में शामिल जोआओ नूनेस एक डेग्रेडादो यानी निर्वासित अपराधी था। गामा, जो हमले के डर से खुद तट पर उतरने से घबरा रहा था, उसने नूनेस को एक प्रयोग के तौर पर कालीकट के हलचल भरे बंदरगाह में भेजा। नूनेस का सामना ट्यूनीशिया के दो व्यापारियों से हुआ जो उस समय के मुआरो ब्रोंकोस यानी सफेद मूर नेटवर्क का हिस्सा थे। ये व्यापारी सोना, चांदी और बेहतरीन कपड़ों का व्यापार करते थे। जैसे ही उन्होंने पुर्तगाली अपराधी को देखा, उन्होंने उसकी ही भाषा में कास्टेलियन और जेनाइस के मिश्रण में चिल्लाकर कहा, शैतान की कसम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इन ट्यूनीशियाई व्यापारियों का जीवन उस वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का सबूत था जो पुर्तगालियों के आने से बहुत पहले से फल फूल रही थी। जब नूनेस ने कहा कि वे ईसाई और मसाले खोजने आए हैं तो ट्यूनीशियाई डरे नहीं बल्कि उन्हें हंसी आ गई। उन्हें आश्चर्य इस बात पर था कि वेनिस, फ्रांस या स्पेन जैसी बड़ी शक्तियों ने पहले यहाँ अपने लोग क्यों नहीं भेजे। ये बिचौलिए एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय कुलीन वर्ग का हिस्सा थे जो जितना लेवेंट यानी भूमध्य सागर का पूर्वी तट में सहज थे, उतने ही भारत के तटों पर भी। वे पुर्तगालियों की तरह स्थानीय रीति रिवाजों से भ्रमित नहीं थे, वे भू राजनीति के उस्ताद थे। उनमें से एक व्यापारी ने नूनेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वे उन्हें ऐसी भूमि पर ले आए जहां इतनी दौलत है। इसका सीधा मतलब ये था कि पुर्तगाली किसी महान योजना के तहत नहीं बल्कि अंधे की तरह भाग्य के भरोसे इस खजाने तक पहुंच गए हैं। इन बहुभाषी ट्यूनीशियाई लोगों की मौजूदगी हमें ये याद दिलाती है कि खोजों का युग, जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं, अक्सर उन दुनियाओं के साथ आमना सामना था जो पश्चिम की भाषाओं और बाजारों से पहले से ही गहराई से परिचित थीं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम के बहाने इन दिनों हमने प्रवेश किया है योग वासिष्ठ के अमूल्य कथा संसार में। श्री राम की वैराग्य दशा पर चर्चा करते हुए आज हम पहुंच रहे हैं अहंकार और चित्त दोष के विषय तक, जिसमें प्रश्न है कि मनुष्य के सारे दुखों का मूल क्या है। क्या बाहरी परिस्थितियां हमें बांधती हैं या हमारे भीतर छिपा अहंकार और चित्त की अशुद्धियां ही बंधन का कारण बनती हैं। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मन के इन्हीं सूक्ष्म दोषों की जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाते हैं, चर्चा अहंकार की जो स्वयं को केंद्र मानकर भ्रम पैदा करता है, और चित्त दोष की जो मन को अशांत, अस्थिर और मोहग्रस्त बनाए रखते हैं, क्योंकि अहंकार और चित्त दोषों के साथ मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं उतर सकता है। तो आइए सुनते हैं आत्म जागरण की वो वाणी जो मन को भीतर से प्रकाशित करती है और जीवन को नई दृष्टि देती है। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वासिष्ठ ग्रंथ खुला हुआ है योग संवाद कार्यक्रम में, भगवान श्री राम की वैराग्य दशा है और वो जो कुछ अपनी बात कह रहे हैं उसके बहाने हम सबके प्रश्नों का समाधान उत्तर मिलता जा रहा है। तो आज हम अहंकार और चित्त दोष पर बात करेंगे
1: जी।
0: और मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि मनुष्य के जीवन में विपत्ति का क्या कारण बताया गया है योग वासिष्ठ में।
1: राम जी जब संसार भ्रमण पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जब लोगों को देखते हैं
0: जी,
1: तो देखने के बाद जो उनको दिखाई देता है तो वो ये पाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो आपत्ति है या जो विपत्तियां हैं उसका मूल कारण उनको अहंकार दिखाई दिया। और ये गुरु जी से वो कहते हैं, वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैंने ये देखा कि व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर दुख और विपत्तियों को आमंत्रित करता है। और जबकि लोगों को लगता है कि हम अपने विवेक या अपने मैपन से हम दुख और विपत्तियों को दूर कर रहे हैं, जबकि सच ये नहीं है। वो कहते हैं सारे के मूल में जो है वो अहंकार है। अहंकार ही मनुष्य पर आने वाली आपत्ति है जो उसे शारीरिक कष्ट भोगने के लिए मजबूर करती है। अहंकार से ही अनेक दुखद मानसिक व्यथाएं भी होती हैं। अब आप कभी विचार करिए कि क्या बिना अहंकार के हम सुखी और दुखी हो सकते हैं? अहंकार का मतलब हुआ कि जहां आपने कोई आकार ले लिया, चाहे देह का ले लिया और चाहे मानसिक रूप से आपने अपनी कोई विशिष्टता बना ली कि मैं अमुक हूं, या मेरे साथ किसी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आपने पहले से तय कर लिया
0: जी,
1: ठीक है। आपने जिन परिस्थितियों में ये व्यवहार तय किया उन परिस्थितियों से वो व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है। आपने अपनी मानसिक दुनिया में उस व्यक्ति को वहां रख करके उस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कर ली
0: जी।
1: और जब उस व्यक्ति के पास गए तो चूंकि वो दुनिया मानसिक आपकी थी, वो व्यक्ति उसमें था नहीं और उसने अपनी दुनिया के अनुसार आपसे व्यवहार किया जो आपकी दुनिया से अलग हो सकता है और होता भी है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो फिर आप दुखी हो गए या आपके अनुसार कर दिया तो आप सुखी हो गए, जबकि सच ये था कि मात्र कोइंसिडेंट था। तो अहंकार मतलब अपने को विशेष मान लेना। अहंकार हमेशा विशेषता की तरफ आपका ध्यान ले जाएगा कि अहंकार का मतलब मैं का आकार।
0: हाँ, हाँ।
1: चाहे वो देह हो और चाहे मैं आपके उपाधियों का मैं हो, भाई उपाधियां भी तो मैं बनाती हैं कि मैं ये हूं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। तो कहते हैं कि सारी आपत्ति और मानसिक जो व्यथाएं होती हैं वो अहंकार से होती हैं।
0: अहंकार से होती हैं। ये भी अद्भुत बात है कि हम सभी जीवन में हैं, संसार को हम सब देखते हैं, यात्राएं हमने भी अनेक की हैं, लेकिन एक किशोर बालक श्री राम जब एक यात्रा करते हैं तो वो किस दृष्टि से संसार को देख रहे हैं।
1: हाँ,
0: अद्भुत बात है ये।
1: 14 साल की उम्र है,
0: लेकिन
1: इससे ये देखिए साबित होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक बात ध्यान दें कि जैसे गीता की बात हमने की तो गीता में अर्जुन जीव का प्रतीक है, यहाँ राम जी ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म जीव कैसे देखता है ये देख रहा है। ये देखिए कितनी बेबाकी है। इसलिए ये ग्रंथ बड़ा अद्भुत और दुर्लभ है। कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने खुद ही कहा कि ऐसा संसार का कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इस योग वासिष्ठ में नहीं है, और अगर समाधान योग वासिष्ठ में नहीं है तो कहीं कोई समस्या भी नहीं है, ऐसी उनकी घोषणा है।
0: जी, हाँ, जी, जी, जी,
1: तो ये इतना दुर्लभ ग्रंथ है कि ब्रह्म जब इस जगत को देखता है तो कितने सूक्ष्म दृष्टि से देखता है कि उनको जो लोगों की परेशानियां, विपत्तियां, आपत्तियां दिखाई दी वो किसी विषय वस्तु से नहीं, अहंकार से दिखाई दी। और हम लोग आज भी विषय वस्तु को मानते हैं कि ये हमारी विपत्ति का कारण, अहंकार को नहीं मानते।
0: जी जी जी। अच्छा, तो फिर अहंकार का त्याग कैसे किया जाए?
1: जी, अहंकार का त्याग, बड़ा सुंदर आपने कहा कि ऐसे अहंकार का त्याग, राम जी कहते हैं कि इस अहंकार का त्याग मैं इस तरह से करता हूं, अपना उन्होंने खुद बताया, कहा कि मैं न अमुक नाम वाला हूं, न विषयों में मेरी रुचि है और न मन ही मेरा है, मैं शांत होकर मन को जीतने वाला महात्मा पुरुष की भांति अपने आप में ही स्थित रहता हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि मैं न अमुक नाम वाला हूं, यानी आपने जो एक नाम, आपका नाम है ही, आपके संबंधों के भी नाम होते हैं, यानी देखें तो आप नाम का ही समुच्चय हैं एक प्रकार से, है ना, किसी पद पर है तो उस पद के नाम से आप नामित हैं कि मैं ये हूं।
0: हाँ।
1: तो अहंकार उसी नाम को चोट पहुंचाता है। देखा जाए जो नाम आप बन के बैठे हैं, जिस नाम को आपने धारण कर रखा है, उसी धारणा की वजह से आपको दुख सुख होता है। तो कहते हैं कि हमने नाम ही त्याग दिया, तो जब नाम त्याग दिया तो नाम से होने वाला सुख दुख भी खत्म।
0: जी।
1: और थोड़ा सूक्ष्म ये कहते हैं, मैं, मेरी किसी विषय में रुचि नहीं है। आप बिना किसी विषय में रुचि रखे आप सुखी दुखी नहीं हो सकते। रुचि के नाते ही वो विषय मिली तो सुखी हुए, रुचि के नाते ही वो विषय नहीं मिली तो दुखी हुए। अगर रुचि नहीं था तो न सुख था न दुख था।
0: जी।
1: है ना। तो देखा है, तो वो कहा कि मेरी किसी विषय में रुचि ही नहीं है, तो ये भी उन्होंने अनासक्त भाव पैदा किया वहां। और कहते हैं न मन ही मेरा है। ये जो मन, जो ये तमाम जो मतलब अहंकार की रचना करता है, या मन ही अहंकार बन के घूम रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की हम लोग बात करते हैं ये वेदांत में, तो मैंने मन का जो सबसे कंडेंस फॉर्म है वो अहंकार है। तो कहते हैं जब मन ही मैं नहीं हूं तो फिर अहंकार होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अहंकार का जो त्याग है वो इसी तीन सूत्रों से हो सकता है, न मैं अमुक नाम वाला हूं, अपनी उपाधि त्याग दें, और न किसी विषय में रुचि रखें। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि विषय में रुचि, इसका अर्थ उदासीनता है। पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा
0: जी।
1: क्योंकि उदासीनता कई बार हमारे राग की वजह से आती है, इस उदासीनता की बात यहाँ नहीं है।
0: जी, जी, जी।
1: रुचि का न होना मतलब राग का न होना, ये है निष्कामता। निष्कामता का मतलब उदासीनता है। निष्कामता एक बहुत ऊंची अवस्था है। जैसे हम लोग कई बार प्रेम प्यार के झमेले में फंस जाते हैं और हम अपनी आसक्ति को प्रेम का नाम दे देते हैं, जबकि प्रेम आसक्ति नहीं है। प्रेम देखें तो एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपकी कोई कामना ही नहीं होती, और आसक्ति बिना कामना के नहीं होती। इसीलिए आसक्ति अक्सर वासनात्मक होती है, और प्रेम वासना से मुक्त होता है, परम पवित्र होता है। तो ये जरा समझने जैसा है। तो ऐसे ही ये उदासीनता कि न मैं कोई मेरी रुचि है और न मन ही मेरा है, तो जब ये स्थिति आएगी तो आपका अहंकार ऐसे ही निर्मूल हो जाएगा, क्योंकि यही तीन अहंकार को खड़ा करते हैं। मन मेरा है, मेरी इसमें रुचि है, और मेरा ये नाम है। तो आप देखें तो ये पूरा अहंकार का संगणित रूप खड़ा हो गया।
0: जी, जी।
1: तो त्याग इन्हीं से राम जी ने कर दिया।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: कहते हैं ऐसे ही आदमी भी कर सकता है।
0: अच्छा, मानसिक चिंताओं को दूर करने का क्या उपाय है?
1: मानसिक चिंताओं को दूर करने का उपाय अहंकार का त्याग है, क्योंकि मानसिक चिंताएं जो उसी से हैं, तो निश्चित ही उसका त्याग करके अहंकार का मूलोच्छेद पूर्वक निराकरण कर देने पर मानसिक दुश्चिंताएं तुरंत अपने आप विलीन हो जाती है। यानी जैसे अच्छा अहंकार का मूलोच्छेदन करेंगे आप, तो वो क्या है? वो है अविद्या। जैसे अविद्या बस ही आपने किसी नाम को, किसी विषय को, मैं कहता हूं कि जिस विषय में आपकी रुचि है, वो विषय जब नहीं था तो क्या आप नहीं थे? या रुचि हमेशा बनी रहेगी क्या? नहीं बनी रहेगी। तो एक तरह से देखें तो अगर आपको ज्ञान हो गया, वास्तविकता का ज्ञान हो गया, जो विद्या की शरण आपने ली, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, हनुमान जी के बारे में कहते हैं। विद्यावान और विद्वान दोनों में अंतर है। विद्यावान होने के बाद अविद्या का मतलब कहते हैं ना विद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या का नष्ट होना ही अहंकार का मूलोच्छेदन है, क्योंकि अहंकार की जननी अविद्या है। जी।
0: अच्छा, जो विवेकवान पुरुष है वो अहंकार को किस रूप में देखता है?
1: ये सुंदर सवाल किया आपने। विवेकवान पुरुष जो है अहंकार को अतिशय दुख रूप देखता है।
0: अच्छा,
1: जैसे जो विवेकवान नहीं है वो भी दुख तो नहीं चाहता, जैसे हम जिन भी वस्तुओं या विषयों के साथ हमारा दुख का अनुभव है, उन विषय वस्तुओं से हम अपने को विरत रखते हैं, दूर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमें दुख देता हो, उसके आने की खबर मिलने पर हम उससे मिलना नहीं चाहते या कोई बहाना कर देते हैं कि हम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अनुभव क्या है कि इस आदमी ने मुझे दुख दिया था तो इस बार भी दुख देगा। ठीक है, तो जो हमारे अंदर जो उससे दूर रहने का भाव आया, दुख के नाते आया, तो ये कहते हैं कि जो विवेकवान पुरुष है वो अहंकार को ही दुख का मूल मानता है। वो कहते हैं कि ये जो अहंकार ही है यही अतिशय दुख रूप है, तो वो अहंकार से हमेशा अपने आप को बचाता है। अहंकार से बचाने का अर्थ, न मैं अमुक नाम वाला हूँ, न मेरी अमुक वस्तु में रुचि है और न मन ही मेरा है, यही अहंकार से बचने का उपाय है। तो हर पल वो अपनी इस जागरूकता को बनाए रखता है, जैसा कि राम जी बना के रखे हुए हैं और वो जो उनके वैराग्य की स्थिति दिखाई दे रही है वो उसका वर्णन कर रहे हैं। जी
0: अच्छा, चंचल चित्त से जो ये जगत है, संसार है, वो किस प्रकार का दिखाई देता है?
1: चंचल चित्त से जो ये संसार है ना, आपको ये विषयों के चिंतन के क्षोभ में हमेशा घुमाता रहेगा। जो चित्त की चंचलता है, आप देखिए जब चित्त क्या करता है, बार बार क्षणभंगुर जो विषय है, आप कभी भी, हम कहते हैं कुछ मत करिए, योग वासिष्ठ जो कह रहा है, और आप अपने अनुभव को देखिए, क्योंकि राम जी ने भी लोगों के व्यवहार को ही देखा। हम एक बार अपने व्यवहार का आत्मन्वेषण करें तो हम ये पाएंगे कि जो ये चंचल मन है, ये कहीं कोई भी इसे अनुकूलता प्राप्त नहीं होती। चंचल चित्त जो है ये कभी भी अनुकूल स्थिति नहीं देगा, क्योंकि अनुकूलता में भी प्रतिकूलता ढूंढने की इसकी प्रवृत्ति होगी, है ना? जैसे हम प्रतिकूलता देख रहे हैं तो हम अनुकूलता खोज रहे हैं, जब अनुकूलता में आए तो प्रतिकूलता। इसके संदर्भ में आपको एक उदाहरण दूंगा मैं, कि जैसे आपने कल्प वृक्ष की कथा सुनी होगी कि एक व्यक्ति जाता है एक पेड़ के नीचे और बहुत थका है, कहता है बड़ी गर्मी है, थोड़ी हवा चलती तो हवा बहने लगती है, ठंडक आती है तो फिर उसे भूख का एहसास होता है, कहता है भोजन मिल जाता तो भोजन भी आ जाता है, फिर ऐसे कहते हैं अब तो थोड़ा विश्राम करना बनता है, थोड़ी नींद आ जाती तो सो भी जाता है, फिर जागता है तो वो सारे दृश्यों को याद करता है कि ये जो जो भी मैंने इच्छा की सब पूरी हो गई, क्या है कहीं कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं है, और कहीं ऐसी शक्ति तो नहीं है जो मुझे ही मार डालेगी, तो फिर मार भी डालती है। तो ऐसे कल्पना एक है। तो ये जो चित्त है, ये या जो चंचल चित्त है, वो इसी तरह का है। आप देखेंगे कि वो सुख के साथ साथ दुख भी खोजने में माहिर है। दुख कहीं और से नहीं आता। इसीलिए जो विवेकवान लोग रहे हैं वो कहते हैं कि अगर आपने सजगता पूर्वक जीवन जीना सीखा, यानी होश के साथ आप बाहोश होके जीने लगे, तो आप अपने चित्त के उन स्मृतियों को कभी भी नहीं जागृत करेंगे जिन स्मृतियों से आपको दुख हुआ था या होता है। और आप जब भी दुखद स्मृतियों के साथ आप होते हैं तो आप देखिए संसार में फिर सुख खोजना आपके लिए मुश्किल होता है। और जो आजकल आज सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में आप देखते हैं, वो क्यों आता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि जीवन को बचाने का अब कोई आधार शेष नहीं बचा, तो ऐसे में जीवन मिटा देते हैं। और इसके पहले जब उनके पास जीवन जीने के आधार होते हैं तो जीवन जी रहे होते हैं, तो वो हमेशा से वो अलर्ट रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं कि कोई उनको, मतलब कोई ऐसी चीज, जैसे हम कहते हैं अपने दरवाजे पर हम घर की सफाई करते हैं, तो ऐसे वो मन को चित्त को इतना साफ रखने का प्रयास करते हैं कि उसमें दुखद स्मृतियां ना आने पाए, जिसकी वजह से वो दुख का सानिध्य कर पाए।
0: जी अच्छा शशिकांत जी, मैं चाहती हूँ कि अब हमारे सुनने वालों को आप ये बताएं कि व्यक्ति को दीनता का जो अनुभव है क्यों होता है, क्या कारण है इसका?
1: व्यक्ति के दीनता का अनुभव चंचल चित्त उसका कारण है, चित्त की चांचल्यता उसकी दीनता का कारण है। चित्त कभी भी आप, क्योंकि आप देखिए जिस चित्त में आपको अपनी दीनता का बोध हुआ है, कभी वही चित्त आपको सर्वश्रेष्ठता का भी बोध कराता है। जब कभी कोई दूसरा व्यक्ति आपको आपकी दीनता के ताने कसे तंज दे, तो उस समय आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि आपको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, और आप जो ये बात बोल रहे हैं ये आप शायद ये बात बोलने के लायक भी नहीं है हमारे सामने, तब आप अपने उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो चित्त में उत्कृष्टता का भाव कहां से आता है? आप ही लाते हैं। यानी अगर वो चित्त की चांचल्यता न हो तो निश्चित ही आप हमेशा उस उत्कृष्टता के साथ जी सकते हैं, लेकिन चित्त की चांचल्यता ही आपको दीन भी बनाती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो लोग चित्त पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो जिसे इंद्रिय जयी हो जाते हैं, है ना, जितेंद्रिय जिसे कहा जाता है, वो लोग होते हैं। और इंद्रियों में सबसे जो प्रभावशाली इंद्रिय है, जिसको उभयेंद्रिय भी कहते हैं, जैसे ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्रदान करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म के लिए आपको उत्सुक करती हैं, तो ऐसे ही मन जो है, मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों का कारण है, इसलिए मन को उभयेंद्रिय कहते हैं। इसलिए सबसे प्रभावशाली इंद्रिय है वो, और उस पर जो काम करता है वो, समझिए, वो विजय प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जो लोग मन से हार जाते हैं, वो समझिए फिर उनको किसी भी चीज के लिए खड़ा खड़पना मुश्किल होता है, जिसके लिए अर्जुन की दशा है। और यहाँ राम जी मन से हारे नहीं हैं, मन के साथ उनके जो मन ने उनके संसार का जो सच देखा है, उस सच का वो कारण लोक कल्याण के लिए वो प्रकट करना चाहते हैं कि लोग सच्चाई जान सकें कि ये अहंकार या चित्त ही सारे दोषों की वजह है। अगर हम इसको वास्तव में बोध में ला पाएंगे तो हम दोषों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे।
0: तो मन के क्षोभ का कारण भी यही है।
1: जी जी, देखिए, विषयों के चिंतन से मन क्षोभ को प्राप्त करता है। यह मन मंदराचल के आघात से उछलती हुई क्षीर सागर की दुग्ध राशि के समान दशों दिशाओं में दौड़ता और भटकता फिरता है। सोचिए आप, ये उपमा दिया है इन्होंने इस ग्रंथ में कि ये किस तरीके से, मतलब ये मन शांति को नष्ट करता है। तो इस प्रकार जो है, मन बार बार आपको संसार में भगाता है। तो इस मन को अगर ठीक से हम समझ पाए, तो मन को समझ पाना ही मन से मुक्ति है। एक्चुअल में मन से लड़ना नहीं है। लोग बात क्या करते हैं, मन का विरोध करना शुरू करते हैं। विरोध से तो और भी आप उसे शक्ति देते हैं, और भी वो प्रभावशाली तरीके से आपका विरोध करता है। जब मन का विरोध आप करते हैं, तो मन का एक, मन दो भागों में बढ़ जाता है, एक लड़ाई करता है आपसे और एक उसके विरोध में खड़ा होता है। कहते हैं मन को समझ लो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जी,
0: अच्छा देखिए, हर इंसान सुख की खोज में है संसार में, है ना, सबको सुख की आकांक्षा है, लेकिन शाश्वत सुख जो है उसका अनुभव क्यों नहीं हो पाता है?
1: देखिए, शाश्वत सुख का अनुभव इसलिए नहीं हो पाता है कि चित्त जो है, उसके लिए चित्त में एकाग्रता का भाव होना बहुत आवश्यक है। और शाश्वत सुख विषयों से विरत होने पर प्राप्त होता है। शाश्वत सुख जो है वो विषयों में प्राप्त नहीं होता। विषयों में हमेशा, आप कभी अनुभव को ही देखें तो किसी भी विषय के साथ आप शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर पाते। कुछ देर के बाद आपका उस विषय से राग मिट जाता है।
0: जी,
1: ठीक है। तो ऐसे में शाश्वत सुख विवेक के द्वारा होता है। और विवेकवान लोगों ने ये कहा है कि प्राप्त विषयों से विरत हो जाना, ये शाश्वत सुख है, जिसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में प्रत्याहार कहा है।
0: जी,
1: कि इंद्रियां जैसे विषयों का आहार करती हैं, विषयों का आहार करके ही राग द्वेषात्मक भाव के साथ व्यवहार करती हैं, ऐसे ही जब विषयों से वो अंतर्मुखी होती हैं, प्रति आहार, प्रति प्रसव जिसको कहा उन्होंने, यानी प्रति प्रसव का मतलब हुआ कि वो फिर जन्म नहीं ले रहा है चित्त, चित्त के अंदर चांचल्यता जन्म नहीं ले रही है। तो ऐसे में जब आप चित्त से विषयों का त्याग करते हैं, विषयों से विरत हो जाते हैं, तो आपको शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। वही परमानंद है, वही आनंदमय स्थिति है आपकी, जहां जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आनंद और सुख के बीच के भेद में ये बात कही जाती है कि सुख शाश्वत नहीं होता, आनंद शाश्वत होता है। हम लोग कई बार पर्यायवाची में इसका प्रयोग कर लेते हैं। जी,
0: अच्छा, मन का मूल स्वभाव क्या है, ये जरूर हमारे सुनने वालों को आप बताएं।
1: देखिए, मन का मूल स्वभाव जो है ना, ये जो है चंचल इसकी वृत्ति है, कहीं ये स्थिर नहीं होता, चिंताओं को जन्म देता रहता है। इस तरह से जो मन का मूल स्वभाव है, वो हमेशा विचलित होते रहना और विचलित करते रहना है। स्थिरता इसका मूल स्वभाव नहीं है। और ये जो हम लोग कहते हैं ना कि मन को शांत करो, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि शांत रहना मन का स्वभाव नहीं है। जो अभी हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि मन से मनन करके अमनी दशा को प्राप्त हो जाओ, ये स्थिति है। तो जो अमनी दशा जो है, वो मन की दशा नहीं है, वो मन से मनन करके मन से मुक्त हुआ जाता है, फिर मन वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। तो ऐसे में मन को शांत करने का जो उपाय है, वो मनन है, चिंतन है, चिंता नहीं है। और चिंता हमेशा विषयों के साथ रत होने पर होता है, विषयों से विरत होने पर चिंता नहीं होता। विषयों से विरत होके चिंतन होता है, और विषयों से रत होकर चिंता होती है। चिंता और चिंतन का ये फर्क है। और कहते भी हैं कि चिता और चिंता दोनों एक जैसी है,
0: एक जैसी
1: है ना। चिंता जीते जी जलाती है, और चिता मरने के बाद जलाती है। तो ऐसे में चिंता यही है तीनों ताप जिसमें जीव जलता है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, जिसको हम लोग भागवत में कहते हैं ना, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हाँ, हाँ, तो वो श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण के चित्त को देखिए, राम जी के चित्त को देखिए, कि राम जी ने जगत के चित्त को जब देखा तो कहा ये चित्त ही सारे दोषों का कारण है। जी
0: अच्छा, संसार का सबसे महान कठिन कार्य क्या है?
1: संसार का सबसे कठिन कार्य है मन को वश में करना, ये कह सकते हैं ना, ये सबसे कठिन कार्य है। वैराग्य प्रकरण में देखें आप तो बहुत तरह के ऐसे आपको दृष्टांत आएंगे जो बार बार मन के वशीभूत हो जाने के कारणों पर बात हो रही है। तो मन को वश में कैसे कर लिया जाए, ये कठिनतम कार्यों में से राम जी ने कहा ये एक है जो मैंने जगत को देखा, गुरु जी से कह रहे हैं कठिनतम कार्यों से, क्योंकि सारा जगत जो है मन के वश में है और मन के वशीभूत होकर वो मरकट नाचाई नर मरकट की नाई, गोस्वामी जी कहते हैं बंदर की भांति कूद रहा है, उछल कूद, बंदर से तुलना की गई चित्त की, तो कूदता रहता है इस डाल से उस डाल। तो ऐसे ही मन को वश में करना सबसे कठिनतम कार्य है। इसको कबीर साहब भी कहते हैं कि जैसे तन का जोग तो सब कर लेते हैं, मन का जोग कोई विरला करता है। तो मन का जोग है मन को वश में करना।
0: जी। अच्छा, तीनों लोगों की जो सत्ता है उसका क्या कारण है?
1: तीनों लोगों की सत्ता का मूल कारण है चित्त। इसमें ये कहते हैं भगवान राम कि चंचल चित्त को वश में कर लेना इससे भी कठिन कार्य है। संपूर्ण पदार्थों का चिंतन करने वाला जो ये चित्त है, इस चित्त को अपने वश में करना, कहते हैं कि ये चित्त ही जो है ये तीनों लोकों की सत्ता को प्रकट करता है। और हम देखिए हम लोग कैसे हैं कि हम लोग तीनों लोकों की सत्ता को मान करके ही जगत में व्यवहार करते हैं, यानी पूरे जगत का व्यवहार जो हो रहा है वो चित्त के कारण हो रहा है
0: जी।
1: तो ये चित्त का दोष है कि अगर चित्त के दोष को आप समझ सकें तो ऐसे में जो मोक्ष की बात की जाती है वो तीनों लोकों से मुक्त होने की बात यही हो सकती है, बसरते चित्त की वास्तविक स्थिति या चित्त के सत्य को हम जान पाएं और जान करके उसे अपने जीवन में अंगीकार कर सकें।
0: तो मैं चाहती हूँ कि चलते चलते हमारे सुनने वालों को आप अहंकार से मुक्ति की जो बात, अहंकार को त्यागने की जो बात थी, वो कैसे त्यागा जा सकता है, हाँ, एक बार एक दोबारा आप बता दें। और चित्त दोष मन को स्थिर करने के लिए क्या उपाय हो सकता है, एक बार आप बता।
1: देखिये चित्त बिना अहंकार, चूंकि चित्त का आधार जो है वो अहंकार है, अहंकार का मतलब होता है कि जहां आपने कोई आकार, कोई उपाधि ग्रहण कर ली है, कोई चुनाव आपने कर लिया है और उस विशेषता के साथ आपने अपने को परिच्छिन्न कर लिया है, अलग कर लिया है। तो जैसे ही आपके अंदर खंडित होने की बात आती है, ये जगत एक अखंड भाव में है, आप देखें तो जैसे वसुधैव कुटुंबकम जब ऋषि ने कहा तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी वसुधा को आपके अस्तित्व का उसने कारण माना कि आप अगर हैं तो वसुधा अगर विभिन्न जीवों के साथ जो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता है, उस जैव विविधता की वजह से आपका होना है। तो चित्त में आप जब इस बात को ठीक से उतार लेते हैं या कह सकते हैं ये निर्द्वंद रूप से ये बात आपके चित्त में समा जाती है तो आप चित्त के दोषों से प्रभावित नहीं होते। चित्त का दोष भी कहना उसे मतलब कहें आप, लेकिन चित्त के दोषों से प्रभावित न होने का उपाय है चित्त के दोषों को जान लेना। जैसे किसी चीज को आप जान करके उससे अपने आप को बचा सकते हैं
0: बिल्कुल।
1: और रही बात आपने कहा अहंकार की, तो कहते हैं अहंकार का जो मूल कारण उन्होंने बताया कि मैंने वो नाम, जिस नाम की उपाधि ले रखी है हमने, उस उपाधि का त्याग किया। और अब देखें तो हम कहते हैं जीव ने उपाधियों के नाते ही अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध से अपने को वंचित कर लिया, क्योंकि वो है तो ब्रह्म ही, लेकिन जो नाम रूपात्मक उपाधियां हैं उन उपाधियों ने उसे आवरण से ढक दिया, जैसे बादल ने सूर्य को ढक दिया
0: जी।
1: तो ऐसे में वो उपाधियां छोड़ दें। दूसरी बात, विषयों में जो रुचि है उस रुचि का त्याग करें, क्योंकि विषयों की रुचि कभी विषयों से पुष्ट नहीं होती
0: जी।
1: क्योंकि रुचि समाप्त होती तो आज तक बहुत सारे विषयों का हमने सेवन किया लेकिन रुचियां तो कभी खत्म नहीं हुई, लगातार वो बढ़ रही है, नए नए विषयों की तरफ भाग रही है, तो और प्रज्वलित हो रहा है वो। तो वो कहते हैं एक तो ये है, और दूसरा सबका जो मूल कारण मन है, उस मन को भी मैंने त्याग दिया कि ये मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं, ये भी अहंकार के विसर्जन का एक मूल कारण है
0: जी।
1: इसको फिर उन्होंने कहा कि अब योग में आ जाइए तो योग में कहते हैं ये अविद्या है, मैं मन हूं, या मैं अमुक नाम रूप वाला हूं, या अमुक अमुक मेरी रुचि और अरुचि का विषय है, ये सब जो है अविद्या के कारण जन्म लेता है
0: जी।
1: तो अहंकार की जननी अविद्या, और अविद्या से ये जो चित्त की चंचलता, विषय में आकर्षण, विषय में द्वेष, राग द्वेषात्मक जो वृत्ति है, इन वृत्तियों का जन्म होता है। तो ऐसे में इनका त्याग करके हम अपने जीवन को शांत कर सकते हैं और संतुष्ट रह सकते हैं।
0: तो बहुत ही सुंदर व्याख्या आपने की है। आज हमने योग संवाद कार्यक्रम में अहंकार और चित्त के दोष पर बातचीत की। आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में अहंकार और चित्त के दोष पर ये बातचीत उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें मुझे। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम भारत विभूति में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो भारतीय पर्यावरण आंदोलन का पर्याय बन गया। ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वह केवल एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक थे। उनका जीवन त्याग, समर्पण और अटूट संकल्प की अद्भुत गाथा है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी वर्ष 1927 को उत्तराखंड के तत्कालीन टिहरी गढ़वाल रियासत के मरोड़ा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नारायण दत्त बहुगुणा और माता का नाम जया देवी था। बहुगुणा जी का बचपन गढ़वाल की पहाड़ियों की गोद में बीता, जहाँ प्रकृति से उनका गहरा नाता बना।
2: उनके परिवार में पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का गहरा प्रभाव था। बचपन से ही उन्होंने पहाड़ों की सुंदरता, वनों की महत्ता और प्रकृति के साथ मानव जीवन के अटूट संबंध को देखा और समझा। यह प्रारंभिक अनुभव उनके भावी जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे।
1: बहुगुणा जी की प्रारंभिक शिक्षा मरोड़ा गांव में ही हुई। उसके बाद उन्होंने लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। उनकी शिक्षा के दौरान ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों ने युवा सुंदरलाल के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। गांधीवादी दर्शन, अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक न्याय के सिद्धांत उनके जीवन के मार्गदर्शक बन गए। बहुगुणा जी ने श्रीदेव सुमन और ठाकुर सेन नेगी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से भी प्रेरणा ली। इन महान व्यक्तित्वों ने उनमें सामाजिक कार्य और देश सेवा की भावना जागृत की। उनकी शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे जीवन के व्यावहारिक पहलुओं और सामाजिक संघर्षों को भी समझने लगे थे।
2: मात्र 13 की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। 1940 के दशक में जब देश में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी, तब युवा बहुगुणा ने टिहरी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने राजशाही के खिलाफ जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन यह कारावास उनके संकल्प को और मजबूत करते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जनसेवा और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को आत्मसात किया।
1: सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनका विवाह विमला बेंजवाल से हुआ। विमला जी स्वयं एक प्रगतिशील विचारों वाली महिला थीं और उनमें भी सामाजिक कार्यों के प्रति गहरी रुचि थी। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो समान विचारधाराओं का मिलन था। विमला बहुगुणा ने अपने पति के हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जब सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन में व्यस्त थे, तब विमला जी ने महिलाओं को संगठित करने और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साबित किया कि एक सफल आंदोलन के पीछे पति पत्नी की साझेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है।
2: और दोनों ने मिलकर सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य बनाया। विमला जी की मृत्यु 2011 में हुई, जो बहुगुणा जी के लिए एक बड़ी क्षति थी। स्वतंत्रता के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने सामाजिक कार्यों में अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी समाज में अनेक कुरीतियां और असमानताएं मौजूद हैं। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ काम करना शुरू किया।
1: बहुगुणा जी ने पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किए। उन्होंने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उन्होंने समझा कि गरीबी और अशिक्षा समाज की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और इन्हें दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन से जुड़कर विनोबा भावे के साथ मिलकर काम किया। भूदान और ग्रामदान आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान उन्होंने यह समझा कि पहाड़ों की समस्याएं केवल सामाजिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय भी हैं।
2: 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन वनों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ था। 1973 में मंडल गांव में जब ठेकेदार पेड़ काटने आए तो गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचाया। बहुगुणा जी ने इस स्थानीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने चिपको आंदोलन को एक दर्शन, एक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया। उनका नारा, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, बेहद लोकप्रिय हुआ और ये पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र बन गया।
1: बहुगुणा जी ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में पैदल यात्राएं की। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को वनों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं देते बल्कि वे मिट्टी को बांधते हैं, जल संरक्षण करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और पूरी पारिस्थितिकी को संतुलित रखते हैं। चिपको आंदोलन की सफलता से वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हिमालयी क्षेत्र में 15 साल के लिए हरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। यह भारत में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर था।
2: चिपको आंदोलन के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध परियोजना के खिलाफ एक लंबा और कठिन संघर्ष शुरू किया। उन्होंने इस परियोजना को पारिस्थितिकीय रूप से विनाशकारी और भूकंप की दृष्टि से खतरनाक बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यह बांध भागीरथी नदी को नष्ट कर देगा और हजारों लोगों को भी विस्थापित करेगा। 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक बहुगुणा जी ने टिहरी बांध के विरोध में कई उपवास और सत्याग्रह किए। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया। 1995 में उन्होंने 45 दिनों का उपवास किया, जो उनके जीवन के सबसे लंबे उपवासों में से एक था।
1: हालांकि टिहरी बांध का निर्माण रोका नहीं जा सका और 2006 में यह पूरा हो गया, लेकिन बहुगुणा जी के संघर्ष ने बड़े बांधों के पर्यावरणीय प्रभाव पर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। उनके प्रयासों ने ये सुनिश्चित किया कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाए। सुंदरलाल बहुगुणा केवल एक आंदोलनकारी नहीं थे बल्कि एक गहरे चिंतक और दार्शनिक भी थे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को आध्यात्मिकता से जोड़ा। उनका मानना था कि प्रकृति केवल संसाधनों का भंडार नहीं है बल्कि ये हमारी माता है और उसके साथ सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए।
2: उनका इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का नारा विकास के वैकल्पिक मॉडल को प्रस्तुत करता है। उन्होंने तर्क दिया कि विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाए, न कि उसे नष्ट करे। उन्होंने औद्योगिक विकास के मॉडल पर सवाल उठाए जो केवल लाभ पर केंद्रित हैं और पर्यावरणीय क्षति को नजरअंदाज करता है। बहुगुणा जी ने गांधीवादी अर्थशास्त्र और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमालय केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए जीवनदायी है और इसकी रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: बहुगुणा जी ने हिमालय की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने हजारों किलोमीटर की पैदल यात्राएं की। ट्रांस हिमालय पदयात्रा में उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक की यात्रा की और हिमालयी राज्यों में पर्यावरण जागरूकता फैलाई। उन्होंने हिमालय में हो रहे अनियंत्रित निर्माण, सड़क निर्माण की गलत तकनीकों, पर्यावरण के दुष्प्रभाव और खनन गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिमालय की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाया गया तो इसके विनाशकारी परिणाम पूरे देश को भुगतने होंगे।
2: 2013 में केदारनाथ की त्रासदी के बाद उनकी चेतावनियां सच साबित हुई। उन्होंने बार बार कहा था कि हिमालय में अनियोजित विकास और पर्यावरण की अनदेखी प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देती है। सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली। उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। 1981 में उन्हें जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें जीवन रक्षा पदक राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है।
1: 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। उनके पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को विश्व भर में सराहा गया। विभिन्न देशों के पर्यावरणविदों ने उनसे प्रेरणा ली और उनके आंदोलन के तरीकों को अपनाया। हालांकि उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक टिहरी बांध बनाया जा रहा है, वे कोई सरकारी सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे। यह उनके सिद्धांतों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
2: बहुगुणा जी का जीवन गांधीवादी सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने और उनकी पत्नी विमला ने अत्यंत सादा जीवन जिया। उन्होंने टिहरी के पास एक छोटे से घर में रहना पसंद किया और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे। वे खादी के वस्त्र पहनते थे और स्थानीय सादा भोजन करते थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उद्देश्य की पूर्ति और समाज सेवा में है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि जीवन में मूल्यों और सिद्धांतों का महत्व सबसे अधिक है।
1: उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें जनता का सच्चा नेता बनाया। लोग उनका सम्मान इसीलिए नहीं करते थे कि वे कोई बड़े पद पर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने में सुंदरलाल बहुगुणा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने समझा कि पहाड़ी समाज में महिलाएं प्रकृति से सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वे जल, ईंधन और चारे के लिए रोज जंगलों में जाती हैं। बहुगुणा जी ने महिलाओं को संगठित करने में मदद की और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन में गौरा देवी, बचनी देवी और अन्य अनेक महिलाओं ने जो साहस दिखाया, उसके पीछे बहुगुणा जी और उनकी पत्नी विमला जी का प्रोत्साहन था।
2: उन्होंने महिलाओं को केवल आंदोलन में भागीदार नहीं बनाया, बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिका में भी लाया। इससे न केवल पर्यावरण आंदोलन को बल मिला, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी एक नई दिशा मिली। बहुगुणा जी का मानना था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में व्याख्यान दिए और युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। उन्होंने पारंपरिक गीतों और लोक कला का उपयोग करके पर्यावरण संदेश फैलाया। उनके नारे और गीत इतने लोकप्रिय हुए कि पूरे हिमालय क्षेत्र में बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गए। पेड़ बचाओ आंदोलन, हिमालय बचाओ, देश बचाओ जैसे नारे जन जन तक पहुंचे।
1: उन्होंने पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की वकालत की। उनका मानना था कि यदि बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाए तो भविष्य में पर्यावरण संरक्षण स्वाभाविक रूप से होगा। सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन ने विश्व भर के पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरित किया। अहिंसक प्रतिरोध और जमीनी स्तर पर जन भागीदारी का उनका मॉडल अनेक देशों में अपनाया गया। केन्या में बांगारी मथाई के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट और अन्य कई आंदोलनों पर चिपको का प्रभाव आज भी स्पष्ट दिखता है।
2: विश्व के अनेक पर्यावरणविद और शोधकर्ता बहुगुणा जी से मिलने और उनके अनुभव सीखने आते थे। उनके आंदोलन की रणनीति और दर्शन पर अनेक शोध पत्र और पुस्तकें लिखी गईं। पर्यावरण अध्ययन में चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन गया। उन्होंने विश्व के विभिन्न मंचों पर भारतीय पर्यावरणीय दर्शन और पारंपरिक ज्ञान को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि आधुनिक पर्यावरण संकट के समाधान भारतीय परंपरा और दर्शन में मौजूद हैं।
1: अपने जीवन के अंतिम दशकों में बहुगुणा जी ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने, अनियमित मौसम और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि विकसित देश अपनी जीवन शैली नहीं बदलते और कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं, तो पूरी मानवता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने विकासशील देशों से भी अपील की कि वे पश्चिम की गलतियों को न दोहराएं और टिकाऊ विकास का रास्ता अपनाएं। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण पर जोर दिया। उनका मानना था कि समय अभी भी है, लेकिन तत्काल और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
2: वर्ष 2021 में जब COVID-19 की दूसरी लहर ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया, तब 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे प्रभावित हुए। मई 2021 में उन्हें COVID-19 पॉजिटिव पाया गया और उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया गया। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए चिंता थी, लेकिन शुरुआत में उनकी हालत स्थिर बताई गई। पूरे देश में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्याप्त थी, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता सभी उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। उनकी बीमारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अनेक नेताओं और हस्तियों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड सरकार ने उनके इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई।
1: 21 मई 2021 को शुक्रवार की सुबह एम्स ऋषिकेश में सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी अंतिम सांस ली। 94 वर्ष की उम्र में इस महान पर्यावरणविद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोविड-19 संक्रमण से उनके शरीर ने हार मान ली, लेकिन उनके विचार और संदेश अमर हो गए। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन दुखद है। वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित थे और चिपको आंदोलन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके विचार और कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
2: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। पूरे देश के पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार टिहरी में पारंपरिक रीति से किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने भारत में पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी और ऐसी परंपरा स्थापित की जो आज भी जारी है। उनके चिपको आंदोलन ने यह साबित किया कि सामान्य लोग, विशेषकर महिलाएं, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं और शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक ताकतों को भी चुनौती दे सकती हैं।
1: उनका सबसे बड़ा योगदान तो ये था कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया। उनसे पहले पर्यावरण मुद्दे केवल वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं तक ही सीमित थे। बहुगुणा जी ने इसे जनता का मुद्दा बनाया और दिखाया कि पर्यावरण संरक्षण रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक पर्यावरण विज्ञान के बीच सेतु का काम किया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की गहरी परंपरा है और इस ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में लागू किया जा सकता है।
2: बहुगुणा जी की वैचारिक विरासत बहुआयामी है। उन्होंने विकास के वैकल्पिक मॉडल की बात की जो पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो। उनका इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है जब दुनिया टिकाऊ विकास के मॉडल की तलाश में है। उन्होंने सिखाया कि विकास केवल जीडीपी वृद्धि में नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता में मापा जाना चाहिए। उनके विचार आज जलवायु परिवर्तन के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
1: उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की गांधीवादी परंपरा को पर्यावरण आंदोलन में लागू करके दिखाया कि सामाजिक परिवर्तन हिंसा के बिना संभव है। उनका तरीका दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना। सुंदरलाल बहुगुणा को उनके जीवन काल में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें वर्ष 1981 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार, 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया जिसे वैकल्पिक रूप से नोबेल पुरस्कार माना गया, वर्ष 1987 में शेरे कश्मीर पुरस्कार, वर्ष 1989 में जीवन रक्षा पदक प्रदान किए गए, वर्ष 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाना था जिसे उन्होंने अस्वीकृत किया। इसके अलावा उन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली। अनेक संस्थानों ने उनके नाम पर पुरस्कार और छात्रवृत्तियां स्थापित की।
2: हालांकि बहुगुणा जी को सम्मान और पुरस्कारों में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कई सम्मान केवल इसीलिए अस्वीकार कर दिए क्योंकि उन्हें लगा कि जब तक उनके मुद्दे नहीं सुने जा रहे तब तक सम्मान का कोई अर्थ नहीं है। बहुगुणा जी के काम ने भारत में अनेक अन्य पर्यावरण आंदोलनों को भी प्रेरित किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन जो कर्नाटक में प्रभावी था, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन और हाल के वर्षों में आर्य फॉरेस्ट बचाओ आंदोलन, इन सभी में चिपको आंदोलन की प्रेरणा देखी जा सकती है।
1: मेधा पाटकर, वंदना शिवा, सुब्रमण्यम स्वामी और अनेक अन्य पर्यावरणविदों ने बहुगुणा जी से प्रेरणा ली। उनके द्वारा स्थापित जमीनी स्तर के आंदोलन का मॉडल आज भी प्रासंगिक है। आज जब भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, वन अधिकार और पर्यावरणीय न्याय की बात होती है तो बहुगुणा जी के संघर्ष और विचार उसकी पृष्ठभूमि में हमें दिखाई देते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा आज की युवा पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है जलवायु परिवर्तन के युग में जब दुनिया भर के युवा पर्यावरण संरक्षण के लिए आवाज उठा रहे हैं, तब बहुगुणा जी का जीवन और कार्य उन्हें दिशा देते हैं।
2: उन्होंने सिखाया कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों पर अडिग रहना और अपने विश्वास के लिए संघर्ष करना कैसा होता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची सफलता पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए आपके योगदान में है। ग्रेटा थुनबर्ग जैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्यावरण कार्यकर्ताओं के संघर्ष में भी बहुगुणा जी की परंपरा की झलक दिखती है। वे आज के युवाओं को यह संदेश देते हैं कि आवाज उठाना, असहज सवाल पूछना और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है।
1: बहुगुणा जी के जीवन और कार्य पर अनेक पुस्तकें, वृत्तचित्र और शोध पत्र लिखे गए हैं। चिपको मूवमेंट पर दर्जनों शैक्षणिक अध्ययन उपलब्ध हैं, जिनमें बहुगुणा जी की केंद्रीय भूमिका का विश्लेषण है। अनेक फिल्मकारों ने उन पर वृत्तचित्र बनाए। चिपको, अ मूवमेंट टू सेव द ट्रीज और अन्य डॉक्यूमेंट्री उनके संघर्ष को दर्शाती हैं। उनकी जीवनी और उन पर लिखी गई पुस्तकें पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अनेक लेखकों ने उनके जीवन से प्रेरित कहानियां और कविताएं लिखी हैं। उनका चरित्र भारतीय सामाजिक आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
2: यद्यपि बहुगुणा जी कभी सरकार में नहीं रहे, फिर भी उनके आंदोलन ने भारत की पर्यावरण नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और अनेक अन्य कानूनों की पृष्ठभूमि में चिपको जैसे आंदोलनों का योगदान था। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को स्वीकार किया गया है और इसमें जन भागीदारी की बात कही गई है। यह बहुगुणा जी के आंदोलन का ही परिणाम है कि आज भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य है। राष्ट्रीय वन नीति, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इन सभी में चिपको आंदोलन और बहुगुणा जी के विचारों का असर देखा जा सकता है।
1: सुंदरलाल बहुगुणा अमर है। उनके विचारों में, उनके आंदोलन में और उन लाखों पेड़ों में जो उनके प्रयासों से बचाए गए, वे हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, हर उस युवा में जो बेहतर भविष्य का सपना देखता है और हर उस दिल में जो प्रकृति से प्रेम करता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि हम धरती के अतिथि हैं, न कि मालिक, और एक जिम्मेदार अतिथि की तरह हमें इस सुंदर ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। यही सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी विरासत है, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान की भावना। उनके विचार और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा बनकर सदैव जीवित रहेंगे।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति। आज का ये कार्यक्रम सुंदर लाल बहुगुणा पर केंद्रित था। कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन अखिलेश कुमार वर्मा का था। और इसके साथ ही आज का भारत विभूति कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
1: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन में, जहां सदा नीरा समागम के तीसरे दिन कई प्रस्तुतियां हुई। यह है जबलपुर के जानकी बैंड की नदी गीतों की प्रस्तुति।

नदियां धीरे धीरे बहना, नदियां जो निरंतर बहना जानती है और हर घाट से मिलती है, जो अपनी मीठी धार से संसार की खारेपन मिटाने का प्रयास करती है और कहती हैं अपने प्रेम को निरंतर लौटाते हुए आगे बढ़ते जाना ही जीवन का सत्य है। तो आइए बढ़ते अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ, जो कि है नदियां धीरे धीरे बहना, जिसके लेखक हैं प्रमोद कुमार।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

0: यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नादिर शाह के नौसैनिक बेड़े का विद्रोह सन 1740, विश्वासघात और बिखरते सपने। अगस्त सन 1740 की भीषण गर्मी में एशिया के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह के महत्वाकांक्षी नौसैनिक सपने अचानक खून और धोखे के दुःस्वप्न में बदल गए। वर्षों तक फारसी शासक ने अपनी शक्तिशाली सेना के बराबर एक समुद्री बल बनाने के लिए काम किया था। उन्होंने तकनीक के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का सहयोग लिया, जबकि जहाज चलाने के वास्तविक अनुभव के लिए स्थानीय अरब जनजातियों पर निर्भर रहे। हालांकि ये किराए की नौसेना रेत की नींव पर खड़ी थी, जो केवल सिक्कों और रोटी के वादे से जुड़ी हुई थी। ये संकट रणनीतिक बंदरगाह बंदर ए लाफ्ट पर भड़का। विभिन्न खाड़ी जनजातियों से भर्ती किए गए अरब नाविकों में भारी रोष था, क्योंकि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला था और उनके राशन के भंडार खाली पड़े थे। यूरोपीय कंपनियों के अनुशासित क्रू के विपरीत, जहां कील हॉलिंग जैसे कठोर सजाओं से व्यवस्था रखी जाती थी, इन नाविकों को एक ऐसे तानाशाह की सेवा करनी पड़ रही थी जो अपने नाविकों की बुनियादी जरूरतों से ज्यादा विजय को प्राथमिकता देता था। विद्रोह कोई शांत पलायन नहीं था, ये सामूहिक हिंसा का एक विस्फोट था। नाविकों ने एक साथ उठकर अपने कमांडरों पर अपना गुस्सा निकाला। इस अराजकता में उन्होंने फारसी एडमिरल मीर अली खान की हत्या कर दी और उन सभी को मार डाला जिन्होंने उनका विरोध करने का साहस किया। जिन पुरुषों को नादिर शाह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रखा था, वे अब इसके सबसे खतरनाक चोर बन गए थे। उन्होंने लंगरगाह से हर संभव जहाज को अपने कब्जे में लिया और खाड़ी में गायब हो गए। इस घटना ने एक चौंकाने वाली विडंबना को उजागर किया। नादिर शाह के बेड़े का निर्माण विशेष रूप से यूरोपीय नौसैनिक प्रभुत्व को दरकिनार करने और समुद्री मार्गों पर फारसी आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया गया था। फिर भी अपनी ही नौसेना के विद्रोह और कुशल नाविकों के चले जाने के बाद शाह को मदद के लिए वापस यूरोपीय शक्तियों की ओर मुड़ना पड़ा। फारसी अधिकारियों ने EIC और डच VOC से प्रार्थना की कि वे अपने श्रेष्ठ युद्ध पोतों का उपयोग उन्हीं जहाजों को हराने के लिए करें जिन्हें यूरोपीय लोगों ने हाल ही में फारसियों को बेचा था। इस संकट का जवाब एक हताश और तात्कालिक गठबंधन के रूप में मिला। उन्हें मदद के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने इनकार किया तो घबराए हुए फारसी अधिकारी उन पर हमला कर सकते हैं। उन्हें बागियों की ओर ले जाने के लिए अपने ही दल को रिश्वत देनी पड़ी। अंग्रेजों ने एक ट्रांकी यानी एक छोटा तटीय जहाज प्रदान किया, जिसमें फैक्ट्री के गार्ड और अकेला तोपची तैनात था। अंग्रेज रिपोर्टों के अनुसार इन गार्डों ने डच या फारसियों की तुलना में कहीं अधिक डटकर मुकाबला किया। सन 1740 का विद्रोह शक्ति के सहयोजन की सीमाओं की याद दिलाता है। इसने साबित कर दिया कि जहां जहाज और तोपें खरीदी जा सकती हैं, वहीं वफादारी और समुद्री कौशल को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। नादिर शाह के लिए उनके अरब नाविकों का विद्रोह एक अपमानजनक झटका था, जिसने उन्हें एक बार फिर उसी यूरोपीय ताकत पर निर्भर कर दिया जिसे वे हटाना चाहते थे।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आइए सुने कार्यक्रम आज़ाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम आजाद हिंद में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं भारत की महान क्रांति परंपरा से और उन विभूतियों से जिन्होंने अपने पराक्रम से समय की धार को बदल कर रख दिया और हमें ये अवसर प्रदान किया कि आज हम सारे विश्व के सामने सर उठा के जीते हैं।
2: इसी तारतम्य में आज बात करते हैं सरजू प्रसाद सिंह की, जिनका जन्म 21 फरवरी 1840 को हुआ था। श्रोताओं, जबलपुर मध्य प्रदेश के उत्तर में उस समय एक जागीर थी जिसका नाम विजय राघवगढ़ था। विजय राघवगढ़ और मैयर एक ही शासक के अधीन थे। जब जागीर का बंटवारा दो भाइयों में हुआ तो एक को मैयर और दूसरे को विजय राघवगढ़ मिला।
1: विजय राघवगढ़ के जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर कंपनी सरकार ने रियासत को प्रतिपालय अधिनियम कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत लेकर वहां कंपनी सरकार का एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया। ये व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि रियासत के उत्तराधिकारी सरजू प्रसाद सिंह की अवस्था उस समय केवल 5 वर्ष की थी
2: और सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बालक सरजू प्रसाद 17 वर्ष के तरुण हो चुके थे। वो क्रांतिकारी स्वभाव के किशोर थे और अंग्रेजों से उन्हें घृणा थी। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने बंदूक और तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था और उन्हें घुड़सवारी में भी महारत हासिल थी और उनमें नेतृत्व के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे।
1: हम सरजू प्रसाद जी के बारे में और बातें करेंगे, आइए पहले सुनते हैं ये गीत।

0: सरजू प्रसाद सिंह ने आसपास के जागीरदारों को मिलाकर 3,000 प्रशिक्षित सैनिकों की एक सेना खड़ी कर ली थी और विद्रोह के पथ पे उन्होंने जो पहला काम किया वो ये था कि कंपनी सरकार द्वारा नियुक्त तहसीलदार को मारकर रियासत का प्रशासन पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। और दूसरा जो काम उन्होंने किया वो ये था कि कंपनी सरकार की घुड़सवार सेना पे अधिकार करके सवारों को मार के भगा दिया और उनके स्थान पे अपने घुड़सवार नियुक्त कर दिए।
1: सरजू प्रसाद सिंह की संगठित सेना को खतरा ये था कि मिर्जापुर मार्ग से आकर अंग्रेजी सेना उस पर आक्रमण कर सकती थी। उसने मिर्जापुर सड़क पर अपना अधिकार करके इस खतरे को भी दूर कर दिया। अंग्रेजी सेना के कैप्टन उले के नेतृत्व में 1857 को एक सेना ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह से मुकाबला करने के लिए भेजी गई।
0: उस सेना की सहायता के लिए 4 नवंबर को मेजर सुलिवान के नेतृत्व में एक और सेना भेजी गई। सरजू प्रसाद सिंह की सेना ने उन दोनों अंग्रेजी सेनाओं को छिन्न भिन्न करके उनके हथियार लूट लिए। इस संयुक्त सेना को तहस नहस करने के बाद सरजू प्रसाद सिंह की सेना ने 6 नवंबर को मुरवाड़ा के समीप एक अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया और घायल होकर अंग्रेज सेनापति भाग निकला। इसके आगे क्या हुआ जानेंगे इस गीत के बाद।

0: अपनी इन निरंतर पराजयों से खिन्न होकर अंग्रेजों ने एक विशाल सेना 14 नवंबर को जबलपुर से भेजी। इस सेना के मेजर जॉन किंग के मारे जाने के कारण सेना स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इसके बाद एक और विशाल सेना जबलपुर से ही कैप्टन उले के नेतृत्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजी गई।
1: इस सेना का सामना सरजू प्रसाद के सहयोगी ठाकुर देवी सिंह ने किया और वे पराजित होकर गिरफ्तार हो गए। अंग्रेजों ने अपनी सहायता के लिए रीवा नरेश की सेना बुलवाई। बड़ी मुश्किल से रीवा और कंपनी सरकार की संयुक्त सेना विद्रोहियों का दमन कर सकी। सरजू प्रसाद सिंह को कई वर्षों बाद अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार किया।
0: ठाकुर देवी सिंह को फांसी का दंड दिया गया और सरजू प्रसाद सिंह को आजीवन कारावास, और विद्रोही तरुण सरजू प्रसाद सिंह ने जीवन भर जेल की कोठरियों में सड़ने के स्थान पर जीवन मुक्ति का उपाय अपनाया। एक दिन उन्होंने अपने पेट में कटार मारकर आत्म बलिदान का पथ अपना लिया
1: और इस तरह शहीद हुआ एक और देशभक्त आजादी की बलिवेदी पर। हमारा उनको सादर नमन।

0: राज, उमेश तरकसवार और मॉरिस लाजरस। गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान द्वारा जारी ऑडियो श्रृंखला जन गर्जे में से।
1: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग आप सुन सकते हैं विविध भारती के भोपाल इंदौर और जबलपुर केंद्रों से हर रविवार सुबह 9:30 बजे और मध्य प्रदेश स्थित आकाशवाणी के अन्य केंद्रों से हर गुरुवार सुबह 8:30 बजे से।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद 90.8 MHz पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम सुर सागर।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम सुरसागर का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप आनंद लेंगे बुंदेली गायन का।

0: यह प्रस्तुति हुई मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित संभावना श्रृंखला के तहत।
1: अगली प्रस्तुति है आपके सामने। जब हमारे बुंदेलखंड में शादी विवाह की रीति रिवाज होती हैं और जब माता सीता श्री राम को जयमाला लेके जाती हैं तो का शब्द है उनके।

बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। जब हमारे बुंदेलखंड में शादी होते हैं और शादी के बाद ज्योनार बैठा, ज्योनार अब शायद कुछ लोग समझे और ना समझे, ज्योनार कहलाते रिसेप्शन, जो शादी के बाद औजान, तो का कह रहे हैं

0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जन को।
1: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे आकांक्षा मिश्रा और उनके साथियों का बुंदेली गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

पुर्तगाली और सेंट थॉमस ईसाई। सन 1498 में जब वास्को दिगामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थीं, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल सन 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैंगानोर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। ये समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए, और संभवतः यहीं उनकी हत्या भी कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था, जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार अल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरों यानी मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टादो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ में आया कि ये समुदाय उनकी कल्पना से अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैंगानोर और कोल्लम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। सन 1560 तक इक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वो प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती हैं जो वे देखना चाहती हैं, और फिर उसे केवल इसलिए नष्ट कर देती हैं क्योंकि वो उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि मायावती आश्रम में कैप्टन सेवियर महाप्रयाण कर चुके थे और श्रीमती सेवियर के बारे में जो आशंका थी कि वे अब मायावती में नहीं रहेंगी वो भी दूर हुआ। स्वामी जी यथासंभव शीघ्रता के साथ मायावती में श्रीमती सेवियर के पास जाना चाहते थे। उस समय पहाड़ों पर भयानक ठंड पड़ रही थी और सामान वाहक कुली भी नहीं मिल रहे थे, परंतु बहुत तकलीफ सहकर भी स्वामी जी अपने साथ स्वामी शिवानंद और स्वामी सदानंद को लेकर मायावती पहुंचे।
1: 3 जनवरी को दोपहर में मायावती के सामने की ऊंची पहाड़ी से चारों ओर फैले चीड़, देवदार, ओक, रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्षों से घिरे आश्रम भवन स्वामी जी को बड़े मनमोहक प्रतीत हुए। फिर आश्रम के नीचे की घाटी में जिस झरने के किनारे सेवियर का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां उतरकर उन्होंने अद्वैत आश्रम के घंटे से 12 बजने की आवाज सुनी। भोजन का समय हो गया जान और शीघ्र ही वहां पहुंच जाने के लिए वे एक घोड़े पर सवार हुए और उसे तेजी से दौड़ाते हुए आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके स्वागत के लिए आश्रम भवन को फूलों से सजाकर और भी सुंदर बना दिया गया है।
0: 17 जनवरी तक मायावती में बिताने के बाद 18 तारीख को स्वामी जी पुनः कलकत्ते की ओर रवाना हुए। दूर दूर तक टहलना अत्यंत प्रिय होने के बावजूद उस समय मायावती आश्रम के चारों तरफ बर्फ से ढके रहने के कारण उन्हें अपना अधिकांश समय आश्रम भवन के अंदर ही बिताना पड़ता था। मौका मिलते ही वे टहलने भी निकलते थे, बाकी समय वे आश्रम वासियों के साथ वार्तालाप करते या फिर निकट के स्थानों से दर्शनार्थ आए हुए लोगों से मिलते। उस समय उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब था, परिश्रम बिल्कुल भी सहन नहीं होता था और बीच बीच में दमे के भी दौरे आते थे। तथापि मायावती में वे बड़े आनंद पूर्वक थे। उनके इस काल के पत्रों में ये बात स्पष्ट रूप से झलकती है। उनके 7 जनवरी के पत्र में लिखा है,
2: श्रीमती सेवियर अत्यंत दृढ़ चित्त की महिला है और अत्यंत शांत एवं सबल भाव से उन्होंने इस शोक को सहन किया है। वे अप्रैल में इंग्लैंड जा रही हैं और मैं भी उनके साथ जाऊंगा। ये स्थान अत्यंत सुंदर है और इन लोगों ने इसे और भी मनोरम बना लिया है। कई एकड़ में फैले इस विशाल स्थान को यत्न पूर्वक रखा गया है। मुझे आशा है कि श्रीमती सेवियर भविष्य में भी इसकी देखभाल कर सकेंगी। वैसी उनकी तो सदा से ही ऐसी आशा रही है। हिमालय में मैं बड़ी अच्छी तरह हूं। यहां पर खूब बर्फ पड़ रही है। मार्ग में प्रबल हिमपात में पड़ गया था, परंतु ठंड उतनी अधिक नहीं है। यहां आने के मार्ग में 2 दिन ठंड लगने से लगता है मेरा बड़ा उपकार हुआ है। आज मैंने श्रीमती सेवियर की जमीन को देखते हुए बर्फ के ऊपर लगभग 1 मील चढ़ाई की। सेवियर ने हर जगह बड़े सुंदर रास्ते बनवाए हैं। अनेक उद्यान, खेत, बगीचे और विशाल वन, सब कुछ उनकी जमीन में है। रहने के कमरे अत्यंत सादे, स्वच्छ, सुंदर और सर्वोपरि आवश्यकता के अनुरूप हैं। चारों ओर 6 इंच बर्फ फैली हुई है। चमकीली और मधुर धूप निकली हुई है और इस समय दोपहर में हम लोग बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं। हमारे चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। हिमपात के बावजूद यहां का जाड़ा काफी मृदु है। वायु शुष्क व स्निग्ध है और जल की तो बात ही क्या।
1: मायावती का अद्वैत आश्रम अद्वैत साधनों के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था और मूर्ति पूजा अनुष्ठान आदि वहाँ निषिद्ध था। ये सब जानकर भी कुछ आश्रमवासियों ने एक कमरे में श्री राम कृष्ण का चित्र स्थापित कर पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों के साथ सादे ढंग की पूजा आरंभ कर दी थी। विरजानंद दल में अग्रणी थे। स्वामी जी के लिए ये सहन कर पाना असंभव हो गया। तथापि उनके जिन युवा शिष्यों ने इसकी व्यवस्था की थी, उनके मन पर आघात लगने के भय से उन्होंने देवालय को बंद करने का आदेश नहीं दिया।
0: ये बात उनकी जानकारी में आने पर उन्होंने केवल आश्रम की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी श्रीमती सेवियर तथा स्वामी स्वरूपानंद की भर्त्सना की। इन लोगों ने चुपचाप सब सुना। जो लोग इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से दोषी थे उन्होंने भी सुना। इसके फलस्वरूप वे लोग लज्जित हुए और स्वामी जी का भाव समझकर पूजा बंद कर दी। 18 मार्च 1902 से मंदिर भी उठा दिया गया, तो भी एक शिष्य के मन में संदेह रह ही गया। स्वामी जी जो करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे वो क्या सचमुच ही सर्व गुरुजन सम्मत था? इस संदेह के निवारणार्थ स्वामी विमलानंद ने माँ शारदा देवी को एक पत्र लिखा। उत्तर के रूप में माँ शारदा देवी ने जयराम बाटी से अपने 31 अगस्त के पत्र में लिखा,
3: हमारे गुरुदेव तो अद्वैत थे, अब तुम लोग उन्हीं के शिष्य हो तो तुम लोग भी अद्वैतवादी हुए। मैं जोर दे करके कहती हूँ कि तुम निश्चित रूप से अद्वैतवादी हो।
1: इसके बाद फिर कभी अद्वैत आश्रम में मंदिर की स्थापना नहीं हुई। बेलूड मठ लौटने के बाद स्वामी जी ने इस घटना का स्मरण करते हुए खेद पूर्वक कहा था,
2: मैंने सोचा था कि कम से कम एक तो ऐसा आश्रम है जहां उनकी यानी श्री राम कृष्ण की मूर्ति पूजा नहीं होगी, परंतु हाय हाय, जाकर देखता हूं तो बूढ़े बाबा वहां भी जमकर बैठे हुए हैं।

0: स्वामी जी अपने दल के साथ मायावती से लौट रहे थे। पीलीभीत स्टेशन से कलकत्ते के लिए ट्रेन पकड़नी थी। पीलीभीत से कुछ दूर स्वामी जी ने देखा कि स्वामी विरजानंद घोड़े पर चढ़ने से डर रहे हैं।
1: अरे सीधे खड़ा हो जा, अरे कैसे समझाऊं?
0: स्वामी जी को मजाक करने का मन हुआ। वे अपनी डांडी से उतरे और बिरजानंद से कहा कि वे उन्हें घोड़े पर चढ़ना सिखा देंगे।
2: किस प्रकार घोड़े पर बैठते हैं, कैसे लगाम थामते हैं आदि विषयों पर किंचित उपदेश देने के बाद उन्होंने बिरजानंद को एक घोड़े पर बैठा दिया।
1: बैठ गया।
2: तदुपरांत स्वयं भी एक घोड़े पर सवार होकर उन्होंने चाबुक मारते हुए उसे दौड़ाया।
3: ये देख, ऐसे बैठ और ये मैं चला। तू भी ऐसा ही कर।
1: अरे बाप रे, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी।
2: परंतु उन्हें वैसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साथी को दौड़ते देख विरजानंद का घोड़ा भी सरपट दौड़ पड़ा। निरुपाय हो विरजानंद किसी प्रकार से घोड़े की गर्दन पकड़े बैठे रहे। इसे लेकर खूब हंसी छिछोली हुई, परंतु इसका फल ये हुआ कि विरजानंद का भय दूर हो गया और बाकी मार्ग में वे अन्य लोगों के साथ ही आनंद पूर्वक घोड़े पर चले।
0: स्वामी जी के कलकत्ता और बेलूर मठ लौट आने पर आश्रम वासी बेहद खुश हुए, परंतु स्वामी जी दुखी थे। ये बात वे भूल नहीं सके थे कि उनके अनुगत शिष्य कैप्टन सेवियर के देहावसान के कारण ही उनको मायावती जाना पड़ा। मायावती से लौटने के बाद भी उनके वार्तालापों और लेखन में उस विषाद का सुर सुनाई देता था। एक और शोक उन्हें सहन करना पड़ा था। उनके शिष्य और सहायक खेतड़ी नरेश के देह त्याग का संवाद भी उन्हें मार्ग में ही मिल गया था। इसलिए श्रीमती ओली बुल को अपने 26 जनवरी के पत्र में खेद पूर्वक सूचित किया।
4: आपकी उत्साहपूर्ण बातों के लिए असंख्य धन्यवाद। इसी समय मुझे उनकी विशेष आवश्यकता थी। नई शताब्दी आ पहुंची है, परंतु अंधकार दूर नहीं हुआ है, बल्कि वो तो और भी गहन होता जा रहा है। मैं श्रीमती सेवियर से मिलने मायावती गया हुआ था। मार्ग में ही खेतड़ी नरेश के आकस्मिक निधन का संवाद मिला। पता चला है कि वे अपने खर्चे से आगरे के किसी पुराने भवन की मरम्मत करा रहे थे। कार्य की प्रगति देखने के लिए वे किसी गुंबद पर चढ़े हुए थे। गुंबद का एक हिस्सा गिर पड़ा और इसके साथ ही साथ उनकी मृत्यु हो गई।
2: मेरी हेल को लिखित उनके 15 जुलाई के पत्र में भी खेतड़ी नरेश की मृत्यु का उल्लेख है।
5: सिकंदरा में सम्राट अकबर की समाधि की एक ऊंची मीनार से गिर पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। आगरा के इस प्राचीन मकबरे की वे अपने खर्च से मरम्मत करवा रहे थे। कार्य का निरीक्षण करते हुए एक दिन उनका पांव फिसल गया और वे कई सौ फीट नीचे गिर पड़े।
0: उन दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य भी काफी बिगड़ा हुआ था। खेतड़ी नरेश अजीत सिंह की मृत्यु 18 जनवरी 1901 ईस्वी को हुई। स्वामी जी उसी दिन मायावती से कलकत्ते के लिए रवाना हुए थे।
2: मायावती से लौटने के बाद स्वामी जी लगभग 2 महीने बेलूर मठ में रहे। उनका स्वास्थ्य उस समय बिल्कुल भी ठीक न था। दमे का प्रकोप आरंभ हो गया था, अन्य शिकायतें भी थी, अतः किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगना तब उनके लिए संभव न था, पर चुपचाप बैठे रहना भी उनके स्वभाव के विपरीत था। इस कारण अपने मठ निवास के दौरान वे अपना समय मौखिक चर्चा, कलकत्ते जाकर अपने मित्रों आदि से मिलने और मठ में नवागत ब्रह्मचारियों एवं पुराने शिष्यों को उपदेश दान या शास्त्र पढ़ाने में बिताते। इनसे अवसर मिला तो वे ग्रंथ पाठ या पत्र व्यवहार करते।
0: स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार हेतु उनके कहीं बाहर जाने की चर्चा चल रही थी। उसी समय पूर्वी बंगाल से उनके लिए बारंबार सागरा आमंत्रण आने लगे। तभी स्वामी जी के मां के मन में भी तीर्थ यात्रा की इच्छा हो आई। इस प्रकार विभिन्न संयोगों से स्वामी जी ने पूर्वी बंगाल की यात्रा करने का निश्चय किया और 26 जनवरी के दिन उन्होंने श्रीमती ओली बुल को लिखा,
4: बंगाल की धरती पर खासकर मठ में पांव रखते ही मेरे दमे का दौर फिर शुरू हो जाता है। ये स्थान छोड़ते ही फिर स्वस्थ हो जाता हूँ। अगले सप्ताह मैं अपनी माँ को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। संभव है इसे पूरा करने में महीनों लग जाएं। तीर्थ यात्रा करना हिंदू विधवाओं की आंतरिक इच्छा होती है। सारे जीवन मैंने अपने सगे संबंधियों को केवल पीड़ा ही दी है। उनकी कम से कम इस एक इच्छा को पूरी करने का प्रयास कर रहा हूँ।
2: स्वामी जी के पत्रों से हमें ये भी ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी माता के साथ दक्षिण की तीर्थ यात्रा पर भी जाने का संकल्प लिया था, परंतु वो पूरा नहीं हो सका। इसका मूल कारण उनका बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य ही था। इसी कारण वे पूर्व बंगाल तथा आसाम में इच्छा के बावजूद ज्यादा दिन ठहर सके थे।
0: पूर्वी बंगाल में स्वामी जी का प्रथम गंतव्य स्थान ढाका था। दिनांक 19 मार्च को स्टीमर ग्वालंद से चला। स्टीमर में हुई एक घटना श्री मन्मथनाथ गांगुली ने लिखी है। पद्मा नदी के विशाल पाट से स्टीमर चल रहा था, तब स्वामी जी ने कुछ मछुआरों को मछली पकड़ते देखा। तब उन्हें स्टीमर के कप्तान सहित उसमें सवार सभी लोगों को मछली के साथ भोजन कराने की इच्छा हुई और गरीब मछुआरों से अच्छा खासा दाम देकर उन्होंने मछली खरीदी और सबको खिलाया।
2: श्रीयुत मन्मथनाथ गांगुली ने इसी यात्रा के दौरान हुई एक और घटना का विवरण दिया है। एक बार ट्रेन में जाते हुए एक स्टेशन पर स्वामी जी ने देखा कि एक मुस्लिम फेरी वाला भुने हुए चने बेच रहा है। उन्होंने अपने सेवक ब्रह्मचारी से कहा,
4: भुने हुए चने खाना बड़ा अच्छा है, बड़ी पौष्टिक चीज है।
2: ब्रह्मचारी ने जाकर एक पैसे के चने खरीदे, परंतु ये समझकर कि स्वामी जी का उद्देश्य फेरी वाले की सहायता करना है, उन्होंने मूल्य के रूप में 4 आने दिए। स्वामी जी ने पूछा,
4: क्यों रे, कितने पैसे दिए?
2: उत्तर मिला,
6: 4 आने।
2: स्वामी जी ने कहा,
4: अरे इतने से उसका क्या होगा, जा 1 रुपया दिया। उसके घर में बहू है, बाल बच्चे हैं।
2: थोड़ी देर बाद वे पुनः बोले,
4: ओहो लगता है आज उसकी ज्यादा कमाई नहीं हुई, इसलिए देखना वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के सामने ही फेरी लगा रहा है।
2: चने केवल खरीदे भर गए, स्वामी जी ने उन्हें चख कर भी नहीं देखा।
0: इसी को कहते हैं जाति वर्ण निरपेक्ष भाव से नारायण ज्ञान से सेवा। ये घटनाएं छोटी होने पर भी एक महामानव के भावनाओं और सहानुभूति की दृष्टि को दर्शाता है। किसी गरीब की व्यथा देखकर जब स्वामी जी को पीड़ा होती तो वे बिना सोच विचार किए ही सहायता करने को अग्रसर हो जाते। अपने जीवन के अंतिम काल के एक पत्र 18 फरवरी 1902 स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था,
4: इस संसार रूपी नरक कुंड में एक दिन के लिए भी यदि किसी के मन में थोड़ा आनंद व शांति दी जा सके तो केवल उतना ही सत्य है, यही मैं आजन्म देख रहा हूं।
0: इसी टोली में स्वामी शुद्धानंद भी थे। उनके मुख से एक रोचक घटना सुनने को मिली।
7: लांगलबंद ब्रह्मपुत्र की एक पुरानी नदी की धारा के मार्ग पर स्थित है। वहाँ नदी में पानी कम और गंदा था, विशेषकर मेले के समय वहाँ हैजे का प्रकोप होना भी संभव था। इन सारी बातों को सोचकर स्वामी जी ने सबको सावधान कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति नदी का जल ना पिए, और सावधान कर देने की आवश्यकता भी थी क्योंकि भारतीयों का ऐसा विश्वास है कि तीर्थ स्थान का जल पीने से शरीर शुद्ध होता है और भक्ति की वृद्धि होती है। तीर्थ में स्नान के बाद जब सभी लोग ढाका लौट रहे थे तो मार्ग में स्वामी जी ने पूछा, अरे भाई किसी ने वहाँ का जल तो नहीं पिया? सबने नकारात्मक उत्तर दिया। तब स्वामी जी ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं डुबकी लगाकर थोड़ा पानी पी लिया था, क्योंकि कौन जाने कहाँ से पुण्य आ जाए। ये सुनकर सबने खूब हंसी टिटोली की। इस घटना में एक ओर तो जहाँ स्वामी जी में अपने आश्रितों की रक्षा के लिए सावधानी दिख पड़ती है, वहीं दूसरी ओर किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को संकट में भी डालने की तत्परता का परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त इससे यह भी प्रमाणित होता है कि उनमें बाहरी तौर पर ज्ञान का आवरण होने पर भी अंतर में सदा भक्ति की धारा प्रवाहित होती रहती है।
0: उन दिनों जब स्वामी जी ढाका में थे, एक दिन एक वेश्या सज धज कर अपनी माता के साथ स्वामी जी के दर्शन की इच्छा से आई। घोड़ा गाड़ी से उतरकर जब उसने कहा कि वो स्वामी जी के दर्शन की इच्छुक है, तो उपस्थित भक्तों में अनेक व्यक्ति सोच विचार करने लगे। इस समाचार को पाकर स्वामी जी ने उन दोनों स्त्रियों को कमरे में लाने का निर्देश दिया। स्वामी जी को प्रणाम कर दोनों खड़ी हो गईं, तो स्वामी जी ने स्नेह पूर्वक स्वर में उन्हें बैठने के लिए कहा। इसके बाद उस नर्तकी की माता ने अपनी कन्या को दमा रोग से ग्रस्त बताकर स्वामी जी से कुछ औषधि और आशीर्वाद की भिक्षा मांगी। स्वामी जी सहानुभूति तथा करुणा के स्वर में बोले,
4: माँ देखो, मैं स्वयं ही दमा से पीड़ित हूँ, अपने ही रोग को दूर नहीं कर सकता। मेरी इच्छा होती है तुम्हारा रोग दूर हो, यदि शक्ति होती तो दूर कर देता।
2: स्वामी जी के इस सरल स्नेहपूर्ण वार्तालाप से वे दोनों स्त्रियां तथा अन्य उपस्थित दर्शकगण मोहित हुए। अंत में उन स्त्रियों ने धन्य हो विदा ली।
0: स्वामी जी छुआछूत के विरोधी थे, वे सभी के हाथों से खाना ग्रहण कर लेते थे, इसीलिए ढाका के अनेक कट्टरपंथी आपत्ति प्रकट करते थे। स्वामी जी ने एक दिन एक व्यक्ति को संबोधित करके कहा था,
4: भाई मैं फकीर सन्यासी हूँ, फिर मेरा जाति विचार तथा आचार नियम कैसा? शास्त्र कहता है सन्यासी भिक्षा करके जीवन धारण करेगा, यहाँ तक कि भिन्न धर्मावलंबी के घर से भी भोजन की भिक्षा मांगना सन्यासी के लिए निषिद्ध नहीं है।
2: ढाका से स्वामी जी साधु नाग महाशय की जन्मभूमि देवभोग का दर्शन करने गए। नाग महाशय ने 1899 ईस्वी के दिसंबर मास में देह त्याग किया था। इससे पूर्व स्वामी जी ने देवभोग में आने का वचन दिया था। इतने दिनों बाद आज उनका वो संकल्प पूर्ण हुआ, परंतु आज नाग महाशय नहीं हैं। यदि आज वे जीवित होते तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होती। पूछने पर उन्होंने कहा था,
4: वे तो महापुरुष थे, इतनी दूर जाकर भी क्या उनका जन्म स्थान नहीं देखता? नाग महाशय की स्त्री ने मुझे कितनी ही चीजें बनाकर खिलाई, उनका मकान भी कितना मनोरम है, मानो शांति आश्रम हो। वहां जाकर मैं एक तालाब में तैरा भी था, उसके बाद आकर ऐसा सोया कि 2:30 बज गए। मेरे जीवन में जितनी बार भी अच्छी नींद हुई है, उनमें से नाग महाशय के घर की नींद भी एक है। उसके बाद उठकर खूब भोजन किया, नाग महाशय की स्त्री ने एक वस्त्र भी दिया, उसी को सिर पर बांधकर मैं ढाका के लिए रवाना हुआ। देखा कि वहां नाग महाशय के चित्र की पूजा होती है, उनके समाधि स्थल को भली भांति बनाए रखना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा अब भी नहीं हुआ है।
0: ढाका भ्रमण के बाद बातों बातों में स्वामी जी ने कहा था कि उस अंचल के लोग बड़े पुरातन पंथी हैं, धर्म को अपनाने के प्रयास में अनेक लोग धर्म उन्मादी हो गए। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था।
4: ढाका के मोहिनी बाबू के मकान पर एक दिन एक लड़के ने न जाने किसका एक फोटो लाकर मुझे दिखाकर कहा, महाराज कहिए तो ये कौन है, अवतार है या नहीं? मैंने उसे अनेक प्रकार से समझाकर कहा, भाई ये मैं कैसे जानूं? 3-4 बार कहने पर भी मैंने देखा कि वो लड़का किसी भी तरह अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है। अंत में मुझे बाध्य होकर कहना पड़ा, भाई अब आगे से अच्छी तरह भोजन किया करो, इससे मस्तिष्क का विकास होगा। पौष्टिक खाद्य के अभाव से तुम्हारा दिमाग सूख सा गया है भाई। इस बात को सुनकर संभव है वो लड़का नाराज हुआ हो, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? लड़के से इस प्रकार न कहने से वो तो धीरे धीरे पागल बन जाएगा। गुरु को लोग अवतार कह सकते हैं, जो मन में आए धारण करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु भगवान का अवतार जहां तहां हर जगह पैदा नहीं होता। मैंने सुना एक ढाका में ही 3-4 अवतार आ गए हैं।
2: ढाका तथा उसके निकट स्थित लांगल बंध तथा देवभोग, इन दो पुण्य स्थानों का दर्शन करने के पश्चात 5 अप्रैल को स्वामी चटगांव जिले के चंद्रनाथ तीर्थ की यात्रा पर गए। 29 मार्च 1909 को श्रीमती ओली बुल के नाम अपने एक पत्र में स्वामी जी ने लांगलबंध तथा चंद्रनाथ के बारे में लिखा है।
4: 5 दिन से मेरी माँ और उनकी संगिनियाँ ढाका आई हुई हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर होने वाले बड़े स्नान पर्व के लिए। जब कभी ग्रहों का कोई विशेष दुर्लभ संयोग होता है तभी नदी के तट के किसी विशेष स्थान पर भारी जन समागम होता है। इस वर्ष 1 लाख से भी अधिक लोग एकत्र हुए थे। नदी नौकाओं से पटी हुई थी। यद्यपि नदी का पाट यहाँ पर लगभग 1 मील चौड़ा है परंतु वो कीचड़ से भरा था, तो भी जमीन काफी ठोस थी, इसलिए हम लोग अपना स्नान पूजन आदि संपन्न कर सके। ढाका मुझे अच्छा ही लग रहा है। मैं अपनी माँ तथा अन्य महिलाओं को साथ लेकर चंद्रनाथ जा रहा हूँ। ये बंगाल के पूर्वी छोर पर स्थित एक तीर्थ है।
0: चंद्रनाथ दर्शन के पश्चात स्वामी जी गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी के मंदिर में गए और कुछ दिन वहाँ विश्राम करने के लिए ठहर गए। गुवाहाटी से वे शिलोंग गए। वहाँ उनकी मुलाकात भारत प्रेमी श्री हेनरी कॉटन से हुई, परंतु शिलोंग जैसे स्वास्थ्य वर्धक स्थान पर भी स्वामी जी ठीक तरह से रोग मुक्त नहीं हुए। अतः समतल में यानी बेलूड मठ में लौट आए। लौटकर उन्होंने मेरी हेल को लिखा था,
4: इस गर्मी के मौसम में मैं बड़ी बड़ी नदियों, पहाड़ों तथा मलेरिया के प्रदेश पूर्वी बंगाल और आसाम के दौरे पर गया था और 2 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद स्वास्थ्य एक बार फिर चौपट हो गया है। अब मैं पुनः कलकत्ते लौट आया हूँ और धीरे धीरे इसके प्रकोप से मुक्त हो रहा हूँ। आसाम में मैं थोड़ा अक्षम हो गया था। मठ की जलवायु अब मुझे थोड़ा चंगा कर रही है। आसाम के पार्वत्य निवास शिलोंग में मुझे बुखार होने लगा था। श्वास की बीमारी बढ़ गई थी तथा एल्बुमिन में भी वृद्धि हुई। शरीर फूल कर प्रायः दुगना हो गया था, परंतु मठ लौटने के साथ ही साथ सारी शिकायतें कम हो गई हैं।
0: कलकत्ता वापस आने पर शिष्य शरद बाबू ने पूछा कि उन्हें पूर्वी बंगाल और आसाम कैसा लगा, तो उन्होंने कहा,
4: देश वैसे बुरा नहीं है। मैदानी भागों में देखा खूब फसल होती है, जलवायु भी अच्छी है। पहाड़ी भागों के दृश्य अतीव मनोरम है। ब्रह्मपुत्र घाटी की शोभा अतुलनीय है। हमारे पश्चिमी बंगाल में लोग थोड़े मजबूत तथा परिश्रमी हैं। मांस मच्छी बहुत खाते हैं। जो भी करते हैं अच्छी तरह करते हैं। खाने पीने में तेल चर्बी का उपयोग खूब करते हैं, ये ठीक नहीं। और आसाम एक तंत्र मंत्र प्रधान अंचल है। वहाँ हंकर देव यानी शंकर देव को भगवान मानकर पूजते हैं। आसाम में शाह को हा कहा जाता है।
0: उन्होंने मेरी हेल को लिखे पत्र में पूर्वी बंगाल और आसाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत खूबसूरती से किया है।
4: संप्रति मैं पूर्वी बंगाल तथा आसाम का भ्रमण कर रहा था। कश्मीर के बाद आसाम ही भारत का सबसे सुंदर प्रदेश है, परंतु बड़ा अस्वास्थ्यकर भी है। अनेक द्वीपों से सुशोभित पहाड़ों पर्वतों के बीच चक्कर लगाती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र की शोभा तो बस देखने लायक है। तुम जानती हो कि हमारे इस प्रांत को पानी का देश कहा जाता है, परंतु इसका वास्तविक तात्पर्य मैं इसके पहले कभी नहीं समझ सका था। पूर्वी बंगाल की नदियां नदियां नहीं, मानो मीठे पानी के लहराते समुद्र हैं, और वे इतनी लंबी हैं कि स्टीमर उनमें लगातार हफ्तों तक चलते रहते हैं।
2: इस समय अनेक व्यक्ति उनके दर्शन तथा आशीर्वाद के प्रार्थी बनकर मठ में आते थे। स्वामी जी प्रत्येक के साथ वार्तालाप करते हुए धर्मोपदेश देते थे। देश के कल्याण की कामना से सेवा का व्रत ग्रहण करने के लिए युवकों को उत्साहित करते थे। विश्वविद्यालय के छात्रों के आने पर तो पूछना ही क्या। स्वामी जी बड़े आनंद से उनके सम्मुख ओज पूर्ण भाषा में शक्ति साधना का महिमा कीर्तन करते थे। सबल शक्तिमान जितेंद्रिय बनने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक युवक को उपदेश देते थे।
0: कभी स्वामी जी घंटों देश की दुर्दशा और उसके प्रतिकार के उपाय के संबंध में शिक्षित युवकों के साथ चर्चा किया करते।

0: चुपचाप ना बैठ सकूंगा।
1: जिन्होंने जीवन में कम से कम एक बार भी स्वामी जी का दर्शन किया है या थोड़ी देर के लिए भी उनके मुख से आशा और भरोसे की वाणी सुनी है, उन सभी ने कहा है कि कितने ही बड़े बड़े विद्वान, व्याख्यान दाता, साधु, सन्यासी देखे, परंतु विवेकानंद जैसा दयालु, दुखी का दुख समझने वाला, दीन पतितों का मित्र दूसरा और कोई भी आज तक न देखा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब विवेकानंद कार्यक्रम के बाद हमारी ये सभा समाप्त होने वाली है रात्रि के, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। तो चलते चलते हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी 31 मई को आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुबह की सभा में सुनने वाले हैं। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनिएगा हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। और सुबह 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, कल द्वारका प्रसाद मिश्रा जी की पुण्यतिथि है, तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम। सुबह 8:30 का वक्त होगा बाल सभा का। कल बाल सभा में आप जानेंगे हार के महत्व को। सुबह 9:00 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम जो कि आधारित होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। सुबह 9:30 का वक्त होगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व का। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 का भाग 5। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से पूर्वाखली ने चर्चा की है। सुबह 10:00 का वक्त होगा देश के संस्थान इस कार्यक्रम का। कल इस कार्यक्रम में हमने जिस संस्थान को शामिल किया है उसका नाम है DRDO। सुबह 10:30 सुनेगा हमारा कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा। श्रोताओं, कल ये कार्यक्रम आधारित होगा रानी अहिल्याबाई होलकर पर। दिन में 11:00 रेडियो रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्षमा कीजिएगा, कल होगी मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात आप सुनेंगे दिन में 11:00 और 11:30 के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्य गुंजन जिसमें आप सुनेंगे रश्मि रथी भाग 1। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। दीजिए पूर्वा खले को अनुमति। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं, अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।